ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के बैसाख मास की 29वीं तिथि, तदनुसार 19 मई 2026। सुबह के 5:53 और 13 सेकंड्स हुए हैं। हमारे कार्यक्रम अब आरंभ होते हैं।

और आइए अब आपको जानकारी दे दें हमारे आज के कुछ कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ ही देर में यानी 6:05 पर होगा कार्यक्रम सुप्रभात, साथ रहेंगे मुनीश जौली। 7:05 से लेकर 9 तक आपके लिए रहेगा गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, जिसमें साथ होंगे सोनू भट्ट और मुनीश जौली एक बार फिर से, जिसमें आप जानकारी ले सकते हैं अपने आसपास के वातावरण के बारे में जो कि है दिल्ली और NCR। और इसके ठीक बाद 9 दिल के तराने गाने नए पुराने में लीजिएगा आनंद कुछ खूबसूरत गीतों का।

पाश्चात्य संगीत का कार्यक्रम आपके लेकर आपके साथ होंगी शालिका कपूर मैचलेस म्यूजिक आर में 10:05 पर, और 11:05 का वक्त रहेगा बॉलीवुड ट्रेल्स का, साथ रहेंगी रश्मि गुप्ता। और 1:05 पर आप ले सकते हैं जानकारी कुछ लीगल सॉल्यूशंस के बारे में जो कि जुड़े हुए हैं मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स के साथ, साथ रहेंगी रश्मि गुप्ता एक बार फिर, और एक्सपर्ट होंगे सैयद रेहान साहब।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भारत ईएफटीए समझौते के तहत 100 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश और 10 लाख नौकरियों के सृजन का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में सभी 5 नॉर्डिक देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत का मजबूत आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को रिपोर्ट सौंपी। पश्चिम बंगाल सरकार ने वित्तीय अनियमितता मामले में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नॉर्वे को व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत 100 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश लक्ष्य को प्राप्त करने और भारत में 10 लाख रोजगार सृजित करने के लिए प्रयास करने चाहिए। प्रधानमंत्री कल ओस्लो में आयोजित भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। क्राउन प्रिंस हकोन और नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनिस गहरस्तुर भी इस शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते टीईपीए के लागू होने के बाद द्विपक्षीय व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
1: यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूनिक और स्पेशल एग्रीमेंट हमारे बीच टैलेंट, टेक्नोलॉजी और म्यूचुअल ट्रस्ट का एग्रीमेंट है। इसी एग्रीमेंट के माध्यम से एफ्टा कंट्रीज से भारत में अगले 15 वर्षों में 100 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत के हरित परिवर्तन पर बल देते हुए देश के विकास, बढ़ती ऊर्जा मांग, जलवायु प्रतिबद्धताओं और नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रिड अवसंरचना, हरित हाइड्रोजन और स्वच्छ ऊर्जा के विस्तार का उल्लेख किया।
1: 2030 तक हमने 500 गीगावाट क्लीन एनर्जी और 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का टारगेट रखा है। क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट नॉर्वे वेल्थ फंड की भी प्राथमिकता है। मैं नॉर्वे को भारत के क्लीन एनर्जी फ्यूचर में अहम हिस्सेदार बनने के लिए आमंत्रित करता हूं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के व्यापारिक समुदायों से नई साझेदारियां बनाने, सहयोग के उभरते क्षेत्रों की पहचान करने और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने का आग्रह किया। शिखर सम्मेलन में 50 से अधिक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और भारत तथा नॉर्वे के व्यापार और अनुसंधान समुदायों के 250 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया। विदेश मंत्रालय के सचिव पश्चिम सिबी जॉर्ज ने प्रेस वार्ता में इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के हरित और समुद्री अर्थव्यवस्था में साझेदारी से अधिक निवेश आएगा, रोजगार सृजित होगा और भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा सहित सतत ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकेगा।
2: Recognizing the ambitious
3: भारत के महत्वाकांक्षी समुद्री अमृतकाल विजन 2047 को मान्यता देते हुए दोनों नेताओं ने जहाज निर्माण, हरित जहाज रानी, जहाज पुनर्चक्रण, बंदरगाह अनुसंरचना का विकास, नाविकों का प्रशिक्षण, मत्स्य पालन, जलीय कृषि और बंदरगाहों के हरितकरण सहित समुद्री अर्थव्यवस्था साझेदारी को बढ़ाने का आह्वान किया है।
2: ग्रीनिंग ऑफ पोर्ट्स।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे की यात्रा के दूसरे दिन आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा। अधिक जानकारी ओस्लो से हमारी संवाददाता से।
4: भारत और 5 नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में आज तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बढ़े हुए क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करेगा। 2022 में डेनमार्क के कोपनहेगन में पिछला सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में

0: प्रौद्योगिकी और नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण यह चर्चा के मुख्य क्षेत्र हैं। TEPL लागू होने के परिप्रेक्ष्य में यह शिखर सम्मेलन व्यापार और निवेश संबंधों को अधिक मजबूत करने का प्रयास करेगा। वर्तमान में इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय व्यापार का मूल्य $19 अरब है। तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
1: प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेल्ला से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों से बातचीत भी करेंगे।
2: रोम पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली में बसे भारतीय समुदाय के सदस्यों से मुलाकात करेंगे, जिनकी यहां उल्लेखनीय उपस्थिति है। वे भारतीय मूल के बच्चों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखेंगे, जिसमें प्रवासी भारतीय समुदाय के बच्चों द्वारा गाया गया एक पंजाबी लोकगीत शामिल है। ये बच्चे रोम के पास स्थित फोंदी कस्बे से आते हैं, जहां उनके माता पिता कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं। ये पंजाबी लोक शैली का गीत एक जट किसान के गर्व, शक्ति और उत्साहपूर्ण जीवन का उत्सव मनाता है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है, ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं, तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन वह परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये केवल तकनीकी प्रगति ही नहीं बल्कि नए भारत की पहचान भी है। गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे।
5: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पिछले 6 दशकों के दौरान नक्सलवाद के कारण बस्तर को बड़े पैमाने पर जो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार अगले 5 वर्षों में करेगी। उन्होंने कहा कि अगले 1.5 वर्षों के दौरान बस्तर में स्थापित सुरक्षा बलों के करीब 200 कैंपों में से 70 कैंपों को जन सेवा केंद्रों में बदलकर उन्हें आदिवासी कल्याण का केंद्र बनाया जाएगा। इन सेवा केंद्रों में बैंकिंग, आधार, राशन कार्ड, कौशल प्रशिक्षण सहित केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं से संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
1: न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत की गई। एक रिपोर्ट।
6: उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ लगे आरोपों की जांच के लिए लोकसभा अध्यक्ष द्वारा पिछले वर्ष 12 अगस्त को एक समिति का गठन किया गया था। रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में उचित समय पर प्रस्तुत किया जाएगा। न्यायाधीश जांच समिति के पीठासीन अधिकारी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार, बम्बई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर और कर्नाटक उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता बीवी आचार्य ने श्री बिरला को न्यायाधीश जांच समिति की रिपोर्ट सौंपी। आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय को मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आधिकारिक आदेश जारी कर निदेशालय को घोष के खिलाफ कथित वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में मुकदमा चलाने की अनुमति दी है। श्री अधिकारी ने कहा कि पूर्व की तृणमूल कांग्रेस सरकार ने इस मामले की जांच प्रक्रिया को लंबे समय तक जबरन और अनैतिक रूप से रोक रखा था। ये मामला एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या से भी संबंधित है। सीबीआई ने 29 नवंबर 2025 को आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में आरोप पत्र दाखिल किया था। अमरीका ने समुद्र में पहले से मौजूद रूस के तेल पर प्रतिबंधों की छूट की अवधि को एक महीने के लिए बढ़ा दिया है। अमरीका के वित्त विभाग ने कल एक आदेश जारी कर 17 अप्रैल या उससे पहले समुद्र में फंसे रूसी तेल पर प्रतिबंधों से मिली छूट की समय सीमा को 17 जून तक बढ़ा दिया है। इससे पहले अमरीका ने 5 मार्च को एक महीने के लिए रूस का तेल खरीदने पर भारत को प्रतिबंधों से छूट दी थी। कुछ दिनों बाद ये छूट अन्य देशों को भी दी गई, जो 11 अप्रैल को समाप्त हो गई थी। अमेरिका इस वर्ष 30 और 31 अक्टूबर को जॉर्जिया के अटलांटा शहर में G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कल घोषणा की कि इस बैठक में दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के विदेश मंत्री शामिल होंगे, जिससे वैश्विक स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए G20 के मुख्य उद्देश्यों को आगे बढ़ाया जा सके। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बना ली है। चेन्नई में पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 180 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद ने 19 ओवर में 5 विकेट पर लक्ष्य हासिल कर लिया। ईशान किशन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आज जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से शाम 7:30 बजे से होगा। मौसम विभाग ने आज मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में दिन के समय मौसम गर्म और उमस भरा रहने की संभावना है। राजस्थान, विदर्भ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज रात भी गर्मी बने रहने का अनुमान है। जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में आज बादल गरजने के साथ बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की गई है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मनोज।
7: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपना शीर्षक बनाया है। दैनिक जागरण लिखता है, अमेरिका प्रतिबंध हटाए या लगाकर रखे, रूस से तेल खरीद जारी रखेगा भारत। सरकार की दो टूक, अपने देश की ऊर्जा जरूरत के हिसाब से तेल खरीदेंगे। हिंदुस्तान ने अमरीकी मीडिया रिपोर्ट के दावे को प्रमुखता दी है। ईरान का नया शांति प्रस्ताव भी खारिज। पंजाब केसरी ने लिखा है, ट्रंप ने युद्ध पूरी तरह खत्म करने के लिए रखी 5 शर्तें। जवाब में तेहरान ने भी 5 शर्तों की सूची थमाई। देशबंधु की खबर है, ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट पर लागू की नई व्यवस्था। स्ट्रेट के प्रबंधन के लिए नया निकाय बनाने की घोषणा की गई है। नवभारत टाइम्स के अनुसार, नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने सोमवार को महाराष्ट्र के लातूर से 10वीं गिरफ्तारी की। सीबीआई का दावा, नीट से 10 दिन पहले मिले थे सवाल। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ में प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा पर विश्लेषण दिया है। नए समीकरणों की उम्मीद शीर्षक से पत्र लिखता है, गहरे भू राजनीतिक संकटों और आर्थिक अनिश्चितताओं के दौर में प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की 6 दिवसीय यात्रा सिर्फ औपचारिक राजनयिक दौरा भर नहीं है, बल्कि इसके व्यापक कूटनीतिक, आर्थिक और सामरिक निहितार्थ भी हैं। दैनिक भास्कर की विशेष खबर ध्यान आकर्षित करती है, स्मार्ट से उबे लोग, बेसिक चीजों में सुकून की तलाश, जो गैजेट चुपचाप काम करे अब वही ज्यादा समझदार।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भारत EFTA समझौते के तहत $100 अरब अमरीकी के निवेश और 10 लाख नौकरियों के सृजन का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में सभी पांच नॉर्डिक देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत का मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। पश्चिम बंगाल सरकार ने वित्तीय अनियमितता मामले में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: हेलो।
1: जय माता दी।
0: जय माता दी। बोले आपका शुभ नाम।
1: मेरा नाम पूरन वर्मा है और मैं
0: जी
1: डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान गांव का नाम अंशमेल बुगला से बात कर रहा हूँ मैडम।
0: ओके, राजस्थान से।
1: जी मैडम, तो आज फिल्म का नाम रहेगा लोहा।
0: लोहा,
1: हाँ जी,
0: लोहा देखता हूँ। लोहा में मैं सिर्फ एक ही गीत है, वो है टू लड़की नंबर वन।
1: अच्छा, किसकी आवाज है मैडम?
0: हाँ?
1: आवाज किसकी है इस गाने में?
0: आवाज शब्बीर कुमार और अलका याग्निक का आवाज में है।
1: हाँ जी, हाँ जी, ये सुना दीजिए फिर।
0: ओके, ठीक है। बोले किसी का नाम लेना है आपको?
1: सबसे पहले तो आप है
0: जी, थैंक यू।
1: और मेरा दोस्त है राकेश है, भगवान सिंह परवान जी है, अभिनाथ जी है, रमेश प्रजापति जी है और बिमल है और अमर है, और आपके जो वहां से कॉल करते हैं ना, कोई माँ के श्रोता और जहाँ भी आपके कार्यक्रम जा रहा है वहां तक उन श्रोताओं को लेकर मैं जाना चाहता हूँ। जी
0: ओके, ठीक है। पुरान जी, आपका गीत सुनिए और एंजॉय कीजिए। कॉल करने के लिए शुक्रिया।
1: थैंक यू मैडम, धन्यवाद आपका भी।
0: वेलकम वेलकम।

0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो कौन को है?
1: नमस्कार नमस्कार
0: नमस्कार, बोलिए आपका शुभ नाम।
1: ग्राम हीरापुर जिला सीहोर मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ दीदी।
0: भगवान सिंह
1: जी जी दीदी, आज आपका कार्यक्रम मैं मोबाइल ऐप पर सुन रहा हूँ, आज डी डी एच पे नहीं सुन रहा हूँ।
0: ओके, बहुत अच्छी बात है। आप लोग कभी कभार डीटीएच पर सुनता है और कभी कभार मोबाइल ऐप पर, बहुत अच्छी बात है। बहुत खुश
1: हूँ दीदी, मैं डीटीएच पे सुनता हूँ आपका हमेशा कार्यक्रम, लेकिन आज उसको दूसरा कार्यक्रम आ रहा तो मोबाइल ऐप कने मोबाइल को कने रख के आपका कार्यक्रम सुन रहा हूँ।
0: ओके, वो भी ठीक ही है। तो ओके, आज कौन सा गीत सुनने है आपको?
1: जी आज बलमा फिल्म का सुना दीजिए।
0: बलमा बलमा, अगर ये नहीं है तो और कुछ है आपका मन में?
1: जी दीदी साजन का सुना दीजिए।
0: साजन में कौन सा वाला गीत?
1: तू शायर है।
0: तू शायर है, किसी को डेडिकेट करना है आपको?
1: जी हाँ दीदी, रमेश प्रजापति जी हैं, भाई कौर मुंडा जी हैं, अमल भस्मचारी विमल भस्मचारी जी हैं, और आशुतोष देवनाथ जी, अविनाश जी हैं, और जो लाइव सुन रहे सभी श्रोता बहनों भाइयों के लिए राकेश जी हैं और पूरन वर्मा जी हैं।
0: ओके ठीक है, और कैसे हैं आप आजकल?
1: अच्छे हैं दीदी, और जैसे ही आपका कार्यक्रम चल हुआ तो मैंने ग्रुप में भी डाल दिया, हमारे हेलो फरमाइश एकता रेडियो श्रोता ग्रुप है दीदी, उसमें पूरे भारत के दोस्त हैं मेरे, तो आपका कार्यक्रम के बारे में मैं उसमें डाल दिया, नंबर भी डाल दिया, तो काफी दोस्त तो आपको सुन रहे हैं दीदी।
0: ओके थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपको, आपने इतना एडवर्टाइजमेंट भी कर दिया है FM ट्रैकोपन का, बहुत अच्छी बात है। और ऐसे ही प्रोग्राम में आके जोड़ती रहिए और आपका जोड़ी बनाए रखिए, और आज कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और आपका गीत सुनिए और एंजॉय कीजिए।
1: धन्यवाद दीदी।
0: ओके वेलकम। उन्हें देखा सब बिल्क प्रोग्राम टे बार दूसरा गीत कारण कॉल करेगी ना अनुरोध करे से मध्य प्रदेश भगवान सिंह और तार पर पसंद करे से साजन फिल्म की गीत गए अलका याग्निक और तार लगा किसुमान साथी बिल्क और শুনি থাকা সব বিলাক কে ডেডিকেট করে দি গিনা আছে। তো শুনি থাকা সব বিলাক একসাথ শুনিব আর এনজয় করা হব। সাজন ফিল্ম কি গীত গাইছে অলকা ইয়াগনিক।

0: हेलो
1: जी नमस्ते जी,
0: नमस्ते। प्रेम
1: प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा तहसील नागदा जिला उज्जैन से सिसोदिया
0: सिंह सिसोदिया कहाँ
1: जी,
0: से?
1: ग्राम बछोड़ा तहसील नागदा जिला उज्जैन मध्य प्रदेश
0: मध्य प्रदेश से। ओके,
1: जी।
0: बोले कैसे हैं?
1: मैं बहुत अच्छा हूँ और आपसे बात करके और भी अच्छा लग रहा है
0: मैं भी
1: जी। जब
0: और
1: किसी बताऊँ आपको दीदी, में
0: हाँ
1: किसी भी आकाशवाणी में कॉल लगता है ना हमारा, तो मतलब बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें हमारे आवाज के साथ में हमें अपना गाना सुनने को मिलता है
0: जी, वो बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोला आपने।
1: जी। और आकाशवाणी परिवार हमारा ऐसा बन चुका है कि जैसे हम कॉल लगा के हेलो नमस्ते ऐसे बोलते हैं ना, तो आरजे भी हमें पहचान जाते हैं और हमारे जितने भी लिसनर होते हैं, जितने भी श्रोता भाई बंधु होते हैं, सभी हमें पहचान जाते हैं
0: जी बिल्कुल।
1: जी।
0: तो बोले, आज कौन सा गीत सुनना है आपको? फना
1: जी फिल्म का नाम है फना और गाने के बोले चांद सिफारिश करता तुम्हारी जी। हाँ
0: फना। ओके, चांद सिफारिश।
1: जी हाँ, आमिर खान
0: ओके।
1: वाली फिल्म है जी। ये फिल्म में गाना सुनना चाहूंगा और ये डेडिकेट रहेगा आपको रहेगा,
0: ओके,
1: और
0: थैंक यू।
1: आकाशवाणी जी हाँ, आकाशवाणी लखनऊ के दीप्ति जोशी और आकाशवाणी शिलोंग के शैली जी, भगवान सिंह परमार, लोकेंद्र वर्मा, तुकाराम यादव और गौतम राय बोले, हमारा ग्रुप बना हुआ ना हेलो फरमा रेडियो एक्टर हो, उसके सभी मेंबर को सुनवाना है और साथ में रहेगा आशुतोष अभिनय संगीता जी और कानपुर से पूनम जी
0: ओके, ठीक है। प्रेम सिंह जी, आपने कॉल किया, आपने जो गीत मांगा है वो भी एक एक एक पल में मिल गया है, और आप सुनिए और एंजॉय कीजिए। और कॉल करने के लिए शुक्रिया।
1: जी। थैंक यू सो मच,
0: ओके, वेलकम,
1: ओके बाय।
0: बाय बाय। হুনি ঠেঙা সব বিলা খুড়ি শান আৰু কৈলাশ খেৰ লগা বাস্তে ফিল্ম ফানা। আৰু এইটো গীতটো শুনিবলৈ মন হৈ কিনা মধ্যপ্ৰদেশ পৰা কল কৰিছে প্ৰেম সিং সিসোদিয়া। আৰু তাৰ পৰা তাৰ লাগে কিছুমান দোষ খানকে ডেডিকেট কৰি কিনে আছে, তো আমি খান বি একসাথ মিলি কিনা শুনিব ফানা ফিল্ম কি গীত গাই আছে শান আৰু কৈলাশ খেৰ।

0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो कुबी कौन को ऐसे कौन
1: जी, मैं तनुश्री सुरवे बात कर रही हूँ। तनुश्री जी,
0: तनुश्री
1: महाराष्ट्र
0: कहाँ से?
1: से जी।
0: महाराष्ट्र से। ओके बोले कैसे हैं?
1: जी बहुत अच्छी हो मैम
0: बहुत खुश हो कि आज आपने कॉल किया है। और कौन सा
1: जी।
0: गीत है सुनने के लिए आपने कॉल किया?
1: अजी मैम, फिल्म का नाम मैं ऐसा ही हूँ।
0: हाँ?
1: मैं ऐसा ही हूँ।
0: मैं एक ओके अगर ये नहीं है तो
1: तो चीनी कम है, चीनी कम है फिल्म का नाम है,
0: कौन सा फिल्म है?
1: चीनी कम है। हाँ
0: चीनी कॉम है
1: जी,
0: वो भी
1: श्रेया
0: नहीं है।
1: घोषाल की आवाज में है मैम, श्रेया
0: कौन सा आवाज में?
1: घोषाल की आवाज में।
0: ओके श्रेया घोषाल की आवाज में। शायद आपने फिल्म का नाम गलत बताया है ना क्या?
1: नहीं, चीनी कम
0: चीनी कम
1: है ऐसा
0: है। शायद मेरे पास वो नहीं है तो आप
1: है।
0: कुछ और फिल्म का नाम बता दीजिए।
1: अब पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, पापा
0: पापा की
1: कहते हैं बड़ा नाम करेगा। फिल्म
0: वो तो गीत का बोल है ना क्या? फिल्म का नाम बता दीजिए।
1: का नाम तो याद नहीं मैम।
0: फिल्म का नाम बता नहीं बताएगा तो मैं भी यहाँ में तकलीफ होगा। पापा कहते हैं हो सकता है आप जो सुनना चाहती हूँ देखता हूँ।
1: जी
0: पापा कहते हैं
1: हाँ
0: ओके कायमत से कायमत तक का फिल्म का नाम है ये।
1: जी जी जी
0: ओके ठीक है। और किसी को डेडिकेट करना है आपको?
1: जी मैम, मेरे पापा को डेडिकेट करना चाहती हूँ
0: आपका पापा का नाम क्या है?
1: जी। रामचंद्र सुर्वे, मेरे पापा सुन रहे हैं अभी
0: ओहो
1: मोबाइल
0: बहुत
1: से
0: अच्छी बात है। और कुछ नाम
1: जी।
0: लेना है आपको?
1: और हमारे सभी श्रोताओं को और खास कर मैम आपको
0: ओके थैंक यू। आप बहुत बहुत स्वीट हो।
1: जी मैम, मुझे आप पहली बार मेरा कॉल लगाए और पहली बार मेरी बात आपसे हुई है,
0: जी आज
1: तो मुझे
0: पहले
1: बहुत
0: बार
1: अच्छा
0: आपको
1: लगा।
0: बात करके मैं भी बहुत अच्छी लग रहा है। और तनुश्री जी आपने फोन किया, आपने जितना भी नाम बताया है वो फिल्म का नाम नहीं था इसलिए मेरे लिए थोड़ा तकलीफ हुआ है। फिर
1: जी
0: भी
1: सर,
0: एक गीत कायमत से कायमत तक से मैं बजा रहा हूँ और आपका पापा के साथ आप दोनों सुनिए और एंजॉय कीजिए। और कॉल करने के लिए
1: ओके
0: शुक्रिया।
1: ओके, बाय बाय।
0: बाय बाय। শুনি রাখা সব বিলাক প্রোগ্রামটি এবার দুসরা গীত কারণে কল করেছে মহারাষ্ট্র পরা তানুশ্রী আর তারপর পছন্দ করেছে কায়মত সে কায়মত তক ফিল্ম কি গীত গাই আছে উদিত নারায়ণ আর খরস আর তারপর তার লাগা পাপ্পা আর শুনি থাকা সব বিলাকে ডেডিকেট করে কিনা আছে। তো শুনি থাকা সব বিলাক শুনিবি আর এনজয় করিবি।

आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

0: हेलो
1: मैम, नमस्कार।
0: नमस्कार, बोलिए, आपका शुभ नाम।
1: मैं रमेश प्रजापति, ग्राम माया, तहसील रेहटी, जिला सीहोर, एमपी से बोल रहा हूँ मैम।
0: जी, आज तो मध्य प्रदेश से इतना कॉल आ रहा है, मैं तो बहुत खुश हूँ।
1: जी जी जी,
0: बोलिए, आज कौन सा गीत सुनना है आपको?
1: अर्पण।
0: अर्पण,
1: हाँ, अर्पण।
0: ओके, आर पर दिखता हूँ। ओके, आर पर
1: तोबा कैसे है नारायण गाना है उसमें।
0: देखता हूँ आर पर। अच्छा, अगर अगर ये मेरे पास नहीं है तो आज आप कौन दूसरा गीत आपका मन में है?
1: हाँ, दूसरा बता दो। कुर्बानी है क्या?
0: कुर्बानी है। कुर्बानी में कौन सा वाला गीत सुनना है?
1: वो लेला हो लेला, कैसी हो लेला।
0: ओके, बहुत अच्छे गीत चुनना है आपने। और बोले, किसी को डेडिकेट करने के लिए सोच रहा है?
1: हमारे कुछ मित्र है, पहले सबसे पहले तो आपको।
0: ओके, थैंक यू।
1: वो फिर भगवान सिंह परमार है, पूरन वर्मा जी है, गजराज लोधी जी है, केसरी सिंह राजपूत है, मांगीलाल चंदेल है, वो धर्मवीर है दिल्ली से, लोकेंद्र वर्मा है नाना खेड़ी से, आशुतोष जी है, संगीता जी है, पूनम जी है, पूर्णिमा जी है, अविनाश जी है, राकेश जी है शिमला से, और अमन भस्माकारी है, गोल्डी जी है, पूना अमर सिंह साहू है, भाई को मुंडा है, रमेश पात्रे है, विमल भाई है और असम से।
0: ओके, रमेश जी, इतना नाम लिया है, मैं तो याद में भी नहीं होगा, फिर भी आपका गीत सुने और एंजॉय कीजिए, और कॉल करने के लिए शुक्रिया।
1: जी, धन्यवाद मैम।
0: वेलकम। অনি ঢেগা সাবিল প্রোগ্রামটি এইবার দুসরা গীত শুনব কুরবানী ফিল্মত অমিত কুমার, কাঞ্চন আর খরচ লগাওয়াজে। আর এই গীত শুনবলে মন হয়ে গেনা পসন্দ করেছে মধ্যপ্রদেশ রমেশ জি, আর তার তারা বহুত বহুত সাথীবিল ডেডিকেট করে গেছে। তো শুনিয়া শুরু হব কুরবানী ফিল্ম কি গীত।

0: FM 103 megahertz.
1: मार्केट के बारे में क्या
2: परफॉर्मेंस का बोलो
3: नहीं तो फ्यूचर
2: मार्केट ट्रेंड है
1: सुनने में आया कि
4: आज की खबर में
5: पहले ही बोला था ब्रो
6: माय प्रेडिक्शन इज
5: आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन
6: मेरे दोस्त ने बोला
7: देवी जी की सुनो
8: अब अच्छा लग रहा है ना लगेगा ही हमने शोर को म्यूट जो कर दिया है आपको भी अपने कीमती सपनों को सच करना है तो बेमतलब की बातों को म्यूट कर दो और म्यूचुअल फंड्स में डटे रहो म्यूचुअल फंड्स सही है
9: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें
10: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for short service commission information technology entry. Last date for submission is 1st June 2026. For more details visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy, combat ready, cohesive, Atmanirbhar, safeguarding seas for a viksit Samriddh Bharat.
0: FM Dragoban
11: 103 megahertz
0: News, music and entertainment
11: FM Dragoban
0: FM 103 megahertz
12: जी हाँ अपने खनहुनिया से आकाशवाणी एफ एम ट्रैगोपन 103 मेगाहर्ट्ज उन्हें ढगा सब बिल्लाक अपना खन सब क्या को स्वागत कर से हिंदी फिल्म गान प्रोग्राम टे और सबसे पहला जानी दिया से ऑल द बेस्ट फिल्म की गीत गाये से क्लिंटन सिरिजो

होने जगह सब बिल्कुल को स्वागत करें से आकाशवाणी एफएम ट्रैक पर 110 मेगाहर्ट्ज पर आरो प्रोग्रामों टेबल बार दूसरा गिट्टिया से क्लिंटन सेरिजो आरो कल्याणी मैनोन लगा वास्ते फिल्म एक दीवाना था।

एक दीवाना था फिल्म के गीत लगत आकाशवाणी एफएम ट्रैकपन 110 मेगाहर्ट्ज पर हिंदी फिल्म गान प्रोग्राम दिए याद प्रसेस करी दिया से होने थका सब बिल्लाक जून जून खान 9 बजे 30 मिनट पर लोग ने इतिहाल लोगे प्रोग्राम के साथ दी गिना से अपना खान सब पौधे खुशी जनाई दिया से इतिहाल पर आलोप सोते अपना लोगे होने बोले पाबो एफएम रेनबो रिले प्रोग्राम आरो আকাশবাণী এফ এম ট্রাগপেন 110 মেগাহার্টজ আপনার খানতে আকো বাপাস আহিব সাম 3 বাজি

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे यात्रा के दूसरे दिन आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत और पांच नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में आज तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बढ़े हुए क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करेगा। 2022 में डेनमार्क के कोपेनहेगन में पिछला सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में प्रौद्योगिकी और नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण, यह चर्चा के मुख्य क्षेत्र हैं। प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: प्रधानमंत्री आज शाम इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का दो दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि केवल भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन लोग भी भारत में व्यावसायिक अवसरों की तलाश करने के लिए उत्सुक हैं।
2: इटली के विभिन्न हिस्सों से आए भारतीय समुदाय के सदस्यों के लिए यह अवसर किसी ऐतिहासिक पल से कम नहीं है। शिक्षा, कृषि, डेयरी फार्मिंग, रियल एस्टेट और अन्य व्यवसायिक क्षेत्रों से जुड़े ये लोग दोनों मित्र देशों के शीर्ष नेताओं के बीच होने वाली इस उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक से अपनी अपनी आकांक्षाएं और अपेक्षाएं लेकर आए हैं। भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन नागरिक भी भारत में उभरते व्यावसायिक अवसरों को लेकर उत्साहित हैं। आकाशवाणी के लिए रोम से सुपर्णा भाटिया।
0: भारत और स्वीडन का विश्वास है कि वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में सहयोग से साझा समृद्धि और सतत भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन द्वारा लिखे गए एक लेख में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बढ़ती भू राजनीतिक अनिश्चितता, ऊर्जा असुरक्षा और आर्थिक बिखराव के समय में दुनिया को फैसला करना है कि वो या तो संकीर्ण राष्ट्रीय सोच की ओर लौट जाए या फिर आपसी सहयोग को सुदृढ़ करे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम से भेंट की और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी महत्वपूर्ण है। श्री सिंह ने कहा कि भारत और वियतनाम साझा मूल्यों, रक्षा, सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता में घनिष्ठ सहयोग साझा करते हैं। श्री सिंह ने हनोई में वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। छत्तीसगढ़ के

जगदलपुर में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की उच्च स्तरीय बैठक शुरू हो गई है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हिस्सा ले रहे हैं। रेलवे ने अरक्कोनम चेंगलपट्टू दोहरीकरण परियोजना के लिए 993 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। चेन्नई उपनगरीय रेल नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला किया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये परियोजना इस मार्ग पर लोगों की भीड़भाड़ कम करने और समय की पाबंदी तथा परिचालन दक्षता में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए लावारिस कुत्तों को टीकाकरण या नसबंदी के बाद वापस न छोड़ने के अपने पूर्व निर्देशों को वापस लेने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवंबर 2025 के आदेश में संशोधन की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया और अधिकारियों को ऐसे कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया। मिजोरम में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो गया है। मिजोरम के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉ. लाल रोजामा ने जनता और निर्वाचन आयोग की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जो एक सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बढ़ोतरी है। ये बढ़ोतरी ईरान संघर्ष और होर्मुज जलडमरू मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद हुई है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 0.3% की वृद्धि दर्ज की गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी।
1: जी हाँ, और आकाशवाणी के FM रेनबो 102.6 पर एक बार फिर से प्रोग्राम आ गया है रेनबो हेल्पलाइन, और रेनबो हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं, आपकी अपनी आरजी, आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त आरजी रश्मि गुप्ता। तो स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। दोस्तों, आजकल ज्यादातर पति पत्नी दोनों वर्किंग हैं, समय कम मिलता है आपस में बात करने का, समय बिताने का, किसी ना किसी छोटी मोटी बात पर झगड़ा होता है और बढ़ते बढ़ते बात बिगड़ जाती है और बन जाती है एक विवाद। तो पति पत्नी के बीच बढ़ते विवाद, घरेलू हिंसा, तलाक, भरण पोषण या फिर ये कहें और भी बहुत कुछ, इन सभी के बारे में, महिलाओं और पुरुषों के कानूनी अधिकारों के बारे में, या कोई भी ऐसी बात जो उन दोनों के बीच किसी तरह का विवाद बना सकती है और उन्हें ज़रूरत पड़ती है कानूनी सलाह की, इसी विषय को लेकर आज हम उपस्थित हुए हैं रेनबो हेल्पलाइन में। हमारा आज का विषय है लीगल सॉल्यूशंस फॉर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स, और हमारे आज के गेस्ट हैं श्री सैयद रेहान, जो एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में, और आज इसी विषय पर बातचीत करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद आपका मुझे अपने स्टूडियो में बुलाने के लिए।
1: तो ये तो है श्री सैयद रेहान जो एडवोकेट हैं, और आज हम बात करेंगे इसी विषय पर। यदि आपका भी कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, तो आप स्टूडियो में डायरेक्ट हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर है 011-234-21080 और 011-234-21084। साथ ही यदि आप व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी तकलीफ लिखना चाहते हैं, अपना क्वेश्चन लिखना चाहते हैं, कोई भी आपकी क्वेरी है, आप उस पर सलाह मांगना चाहते हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। और ध्यान रखिएगा, आज का विषय है लीगल सॉल्यूशंस फॉर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स।

0: जी हाँ बिल्कुल, जब शादी होती है तो शुरू शुरू में सब कुछ ऐसा ही लगता है कि दोनों का प्यार जो है अमर है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि छोटी छोटी समस्याएं जो होती हैं वो बड़ी बन जाती हैं और फिर एक बड़े विवाद का कारण बन जाती हैं। तो सर, सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स यानी कि वैवाहिक विवाद क्या है और किस तरह के विवाद इसके अंतर्गत आते हैं?
1: देखिए, सबसे पहले तो जो विवाद होता है स्पेशली हस्बैंड और वाइफ के बीच में, वो आपस के जो अपनी संतुलन एक दूसरे के बीच में और एक दूसरे का को ना समझ पाने में शुरू होता है। और इसमें बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि पेरेंट्स और इन लॉज या कुछ रिश्तेदारों के इंटरफियर की वजह से ये विवाद पैदा होता है। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये विवाद होता क्यों है, उसकी वजह क्या है। तो उसकी वजह में सबसे पहले वो लोग हैं जो आपके साथ रहते हैं और इंटरफियर करते हैं पति और पत्नी के एक दूसरे के रिलेशन में।
0: जी।
1: नंबर दो, उनकी आपने पूछा कि होता क्यों है, तो होने में एक दूसरे के ईगोज क्लैश करते हैं जिसकी वजह से ये ऐसा होता है। और इसमें मेरा ये एक मानना है कि सबसे पहले इस तरीके के जो विवाद होते हैं इनको काउंसलिंग के लिए भेजना चाहिए, दोनों लोगों की काउंसलिंग होनी चाहिए। बल्कि मैं ये भी कहता हूँ, ये मेरा सजेशन है कि काउंसलिंग पेरेंट्स की, इन लॉज की और उन रिश्तेदारों की भी होनी चाहिए जो उनके साथ पति या पत्नी के साथ रहते हैं।
0: जी, तो मतलब कुल मिलाकर बात इतनी है कि यदि कोई भी झगड़ा आपका होता है तो सबसे पहले तो आप आपस में बैठकर सुलझाइए, और नहीं तो आपको एक काउंसलिंग की ज़रूरत है।
1: बिल्कुल।
0: और वहाँ पर आप अपने पेरेंट्स के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, क्योंकि छोटी छोटी समस्याएं कई बार घर वालों के साथ जुड़ी होती हैं और वो पति पत्नी के बीच आ जाती हैं।
1: जी।
0: अच्छा, क्या हर वैवाहिक विवाद का समाधान कोर्ट ही होता है, या मतलब समझौते के रास्ते वाकई में मौजूद होते हैं?
1: जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट से लेकर के और ट्रायल कोर्ट तक सबको एक मीडिएशन की सुविधा दी गई है।
0: जी।
1: और सबसे पहले इस तरीके के जो भी विवाद आते हैं, कोर्ट का भी यही नज़रिया होता है कि आप सबसे पहले समाधान केंद्र पे जाइए और आपस के विवाद जो भी हैं वहाँ बैठ के और उसको निपटाइए, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा झगड़े नहीं होते हैं ऐसे कि जो आपस में सेटल ना किए जा सकें, इसलिए कोर्ट पहले भेज देता है सेटलमेंट के लिए मीडिएशन में और सबको एक चांस ज़रूर देता है, चाहे पति हो या पत्नी हो।
0: जी जी।
1: अब कभी कभी ऐसा होता है कि एक पार्ट जो है पति या पत्नी वो रिजिड हो जाते हैं कि नहीं, मुझे समझौता नहीं करना है, मुझे केस लड़ना है। उसमें भी कोर्ट ये सजेस्ट करता है कि नहीं, पहले आपको एक बार सेटलमेंट के टेबल पे बैठना पड़ेगा, मीडिएशन में जाना पड़ेगा, उसके बाद अगर नहीं बनती है बात तो आप ज़रूर आइएगा, क्योंकि मीडिएटर अपॉइंट किए जाते हैं कोर्ट की तरफ से और वो ट्रेन मीडिएटर होते हैं और उनका काम इस तरीके के झगड़े को निपटाना होता है।
0: जी।
1: तो इसमें ज़्यादातर ऐसा होता है कि जब वो लोग वहाँ जाते हैं तो उनके झगड़े का समाधान हो जाता है और फिर वो आके इस बात को कहते हैं, धन्यवाद देते हैं कोर्ट को कि आपने अच्छा किया, हमें भेज दिया और हमारा आपस का झगड़ा खत्म हो गया।
0: जी, तो कितनी आसान तरीका है ना, कि मतलब अपनी बातचीत को आप बजाय की ओर बढ़ाने के, आप मीडिएशन के जरिए अपने झगड़े को खत्म कर सकते हैं।
1: जी।
0: आज हम बात कर रहे हैं मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स की और उनके लीगल सॉल्यूशंस की। यदि आपका भी कोई सवाल है, कोई भी क्वेरी है आपकी, तो आप हमें स्टूडियो में डायरेक्ट फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 011-2342-1080 और 011-2342-1084।

0: रेनबो हेल्पलाइन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आज का हमारा विषय है मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स एंड लीगल सॉल्यूशंस। यदि आपका भी इससे जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप स्टूडियो में फोन कर सकते हैं। साथ ही यदि आप डिटेल में अपना सवाल पूछना चाहते हैं और लिखकर बताना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। सर, अब मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, जो घरेलू हिंसा होती है क्या वो भी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स के अंतर्गत आती है, और यदि आती है तो किस तरह के कृत्य होते हैं जो घरेलू हिंसा के अंतर्गत आते हैं?
1: जी, पति और पत्नी दोनों के साथ ऐसा संभव है कि घरेलू हिंसा हो सकती है, जिसमें कि कानून हमें दोनों को अधिकार देता है कि अगर आपके साथ किसी भी प्रकार की घरेलू हिंसा होती है तो उसमें उस कंसर्न पुलिस स्टेशन में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की सेक्शन 12 में आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं
0: जी।
1: और कंसर्न पुलिस स्टेशन में CAW सेल एक बना होता है, उसमें आप अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे और उसकी इंक्वायरी की जाएगी, और जिस किसी के साथ ऐसा हुआ है उसके अगेंस्ट पुलिस एक्शन लेगी और उसकी रिपोर्ट कोर्ट को भी देगी अगर ये उसी जगह पर समझौता नहीं हो पाता तो
0: जी।
1: तो सबसे पहला केंद्र समझौते का CAW सेल होता है, जहां पर वार्निंग दी जाती है आगे नहीं होने के लिए। ऐसा पुलिस स्टेशन में पुलिस ऑफिशियल्स जो हैं आपको वार्न करते हैं, किसी भी पक्ष को, पति हो या पत्नी
0: जी।
1: तो ये पहला स्टेप होता है और इसमें कानून हमें पूरा अधिकार देता है कि हम इस तरीके की हिंसा के खिलाफ जाकर के शिकायत कर सकते हैं।
0: तो सर, जो महिला है मान लीजिए, वो मतलब उसको खुद ही जाना पड़ेगा या उसके तरफ से कोई और भी शिकायत कर सकता है?
1: नहीं, जो विक्टिम है, जिसके साथ ऐसा हुआ है, उसका जाना तो जरूरी है। वो जाएगा तभी अपनी पूरी बात बताएगा और तभी उस पर कानून ठीक से काम कर सकेगा। अगर जिसके साथ ऐसा हुआ है वो नहीं पहुंचेगा तो उसके साथ जो हुआ है कैसे पुलिस को पता चलेगा और वो एक्शन कैसे ले सकती
0: जी,
1: है
0: जी।
1: अगर उसके साथ मारपीट हुई है तो उसको चोट लगी होगी, उसका मेडिकल कराया जाता है, प्रॉपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की जाती हैं जो कि एक विक्टिम को न्याय दिला सकता है
0: जी।
1: अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर न्याय अधूरा रह जाएगा।
0: ओके, एक सवाल भी इससे रिलेटेड पहुंचा है, पैंथर तोमर लिख रहे हैं किशनगंज दिल्ली से, कहते हैं घरेलू हिंसा में अगर महिला डर से कतराकर शिकायत दर्ज नहीं करा पा रही तो क्या एक पड़ोसी होने के नाते मैं शिकायत दर्ज करा सकता हूँ, और शिकायत की प्रक्रिया क्या है?
1: जी, आप शिकायत जो पुलिस हेल्पलाइन नंबर है उस पे दर्ज करा सकते हैं
0: जी,
1: और वो उस पे पुलिस एक्शन लेती है, वो खुद वहाँ पहुँचती है और सारी प्रक्रियाएं वहीं से शुरू होती हैं। जरूरी नहीं है कि विक्टिम को जाना पड़े, अगर ऐसे हालात हैं कि वो जा नहीं सकती
0: जी, जी।
1: तो कोई भी पड़ोसी, दोस्त, रिश्तेदार पुलिस में शिकायत कर सकता है और पुलिस वहाँ पहुँचकर इंक्वायरी करेगी और इस जिस भी तरीके का हिंसा हुई है वो पुलिस एक्शन लेगी, कार्रवाई करेगी
0: जी। घरेलू हिंसा अधिनियम महिलाओं को कौन कौन से अधिकार देते हैं?
1: सबसे पहले जो सेक्शन है, सेक्शन 12, उसमें आपको ये अधिकार है कि आप शिकायत दर्ज कराएं। अगर आपके साथ मारपीट हुई है, शारीरिक शोषण हुआ है, तो उसमें उन धाराओं का, जैसे कि एक नॉर्मल कोर्स में किसी भी घटना को लिया जाता है और सेक्शंस लगाए जाते हैं, वो सेक्शंस भी उसमें इन्वॉल्व होंगे, वो भी लगाए जाएंगे
0: जी।
1: जिस तरीके की हिंसा होगी, जिस तरीके की आपके साथ बर्बरता की गई है, उसी तरीके से आपके साथ

0: न्यायिक कार्रवाई की जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपके साथ ऐसा कोई शारीरिक हिंसा नहीं
1: उत्पीड़न,
0: हुई है,
1: जी
0: उत्पीड़न
1: जी
0: नहीं हुआ है, केवल आपको मानसिक उत्पीड़न दिया जा रहा है,
1: जी
0: उस स्थिति में भी आपके साथ पूरा न्याय होगा। और वो सेल CSW सेल स्पेशली इसलिए बनाया गया है कि आपके साथ किसी भी तरीके की मानसिक या शारीरिक प्रताड़ना ना की जा सके इन फ्यूचर।
1: अच्छा, जनरली कहा जाता है कि जो घरेलू हिंसा है वो महिलाओं के साथ होती है, लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि घरेलू हिंसा का शिकार पुरुष भी हो रहे हैं, तो क्या इसकी शिकायत पुरुष लोग भी कर सकते हैं?
0: जी हाँ, कानून में अधिकार दोनों के लिए बराबर दिया गया है,
1: जी
0: पुरुष के लिए और महिलाओं के लिए वही सेक्शन अप्लाई होते हैं जो कि एक दूसरे महिला के लिए होते हैं।
1: जी
0: इसमें सेक्शन 12 हिंसा के लिए बनाया गया है, पुरुष खुद जा करके भी कर सकता है, पुरुष के लिए भी दूसरा कोई रिश्तेदार या उसका पड़ोसी भी कर सकता है कि इनके साथ हिंसा की जा रही है।
1: जी तो कुल मिलाकर आपने देखा, आपने सुना सर से कि किस तरह से आप यदि घरेलू हिंसा का शिकार हो रहे हैं तो आप सिर्फ पुलिस हेल्पलाइन पर फोन करके ही आप अपनी शुरुआत की शिकायत दर्ज करा सकते हैं, और उसके बाद पुलिस आकर पूरे कार जो प्रोसेस है वो आपको बताएंगी और आप पुलिस स्टेशन जाकर आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। और इस केस में यदि महिला खुद नहीं जाना चाहती तो कोई रिश्तेदार, कोई पड़ोसी, कोई दोस्त भी उसकी तरफ से शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रेनबो हेल्पलाइन और आपके साथ हूं मैं, आपकी अपनी आरजे रॉकिंग रश्मि। बहुत सारे सवाल, बहुत सारी परेशानियां कई बार मन में चल रही होती हैं, लेकिन हमें लगता है किससे कहें, कैसे कहें, कैसे हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा। तो उसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए आज का रेनबो हेल्पलाइन है, उन महिलाओं के लिए, उन पुरुषों के लिए जो कहीं ना कहीं किसी वैवाहिक विवाद से जूझ रहे हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा फ़ोन नंबर है 011-2342-1080 और 011-2342-1084। हमारे साथ हैं श्री सैयद रेहान जो एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में और आज के विषय में बातचीत कर रहे हैं।
2: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से, केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
3: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए 5 यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
2: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें, विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
3: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: सर एक कॉल आई है हमारे पास, जानते हैं इनका क्या सवाल है। हेलो।
1: हेलो
0: जी, पूछिए आपका सवाल, पूछिए और आप अपना नाम बताइए, कहाँ से आप बोल रहे हैं।
1: जी मेरा नाम राजेंद्र है और मैं करमपुरा दिल्ली से ही बोल रहा हूँ। पहले तो एंकर मैम को नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: और वकील साहब को भी सलाम वालेकुम।
2: जी जी नमस्कार।
1: जी मेरे तीन चार छोटे सवाल हैं। पहला सवाल तो ये है कि हस्बैंड वाइफ जब उनकी मैरिज हो जाती है तो उनमें डिस्प्यूट कॉन्फ्लिक्ट कम से कम हो, डोमेस्टिक वायलेंस तो इसलिए क्या या हो ही ना या कम से कम हो तो उनको क्या करना चाहिए, पहला सवाल मेरा ये है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि मैं अरेंज मैरिज या लव मैरिज आप किस पे फोकस करेंगे, ज्यादा बेटर क्या ऑप्शन है ये बताएं आप। तीसरा सवाल मेरा ये है कि जैसे हम कोई सामान खरीदते हैं उसकी गारंटी वारंटी होती है तो क्या आईपीसी में ऐसा कोई प्रावधान है कि जब शादी होती है नहीं नहीं तो लड़की लड़के से शादी के लड़का लड़की से इसकी भी कोई गारंटी वारंटी की भाई आप अगर 5-6 महीने।
0: चलिए ठीक है, आपके सवालों का जवाब देते हैं सर, आप सुनिए ऑन एयर सुनिए आप। जी
2: देखिए राजेश जी,
0: राजेंद्र जी।
2: मेरा यहाँ पर आपके साथ एक सजेशन ये है कि सवाल आपके डिस्प्यूट से रिलेटेड नहीं है, आपके प्री लिटिगेशन की तरह आप कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो
0: जी, जी।
2: हम यहाँ पर अगर कोई डिस्प्यूट है तो उसका जवाब देते हैं। आपका कह पूछना है कि अगर ऐसा होता है तो उसकी बचाव के लिए क्या किया जाए, उसका जवाब मैं ये दे सकता हूँ कि एक दूसरे पति पत्नी में ईगो नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले हम एक दूसरे का रेस्पेक्ट करें, एक दूसरे की बातों को सुने।
0: जी
2: हमारे 50% विवाद यहीं पे ख़त्म हो जाते हैं जब हम एक दूसरे की बातों को समझते हैं, सुनते हैं और उनको एक मौका देते हैं। अगर हम आपस में बिना किसी को मौका दिए और अपनी ईगो को लेकर के आगे बढ़ते हैं तो यहीं से विवाद की शुरुआत होती है।
0: जी
2: दूसरी चीज़ ये है कि इसमें घर वालों का बहुत ज़्यादा रोल होता है, चाहे वो इन लॉज हों चाहे वो हमारे पेरेंट्स हों, हमारे पति पत्नी के बीच उनके इंटरफियर की वजह से भी बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती हैं तो हमें इससे भी बचना चाहिए।
0: जी सर एक सवाल और आया है, वो कहते हैं कोर्ट कैसे तय करेगा कि महिला घरेलू हिंसा का शिकार है अगर महिला के पास कोई ऑडियो या वीडियो ना हो, क्योंकि ऐसा बहुत से केसेस में होता होगा।
2: जी हाँ बिल्कुल होता है। इसमें सबसे पहले उसके साथ की गई हिंसा का दायरा क्या है, यानी कभी कभी ऐसा होता है कि मारपीट होती है लेकिन उसका सबूत नहीं होता, कभी कभी गालियां लोग दे देते हैं लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं होती।
0: जी
2: तो ऐसे में स्टेटमेंट जो पति का है या पत्नी का है, दोनों के लिए ये मैं कहता हूँ, वो CAW सेल में जा करके दर्ज कराना होता है या आप घर में भी एक कॉल करके पुलिस हेल्पलाइन में उनको दर्ज करा सकते हैं, ऑडियो के ज़रिए अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और फिर उस पर इंक्वायरी होती है, पुलिस इंक्वायरी करती है और इंक्वायरी के बाद वो एक उस पे पहुंचते हैं, डिसीज़न पे पहुंचते हैं कि आखिर हिंसा ये किस स्टेज की हुई है और उस पे वो आगे केस को बढ़ाते हैं।
0: जी एक कॉलर और हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो।

0: जी नमस्कार।
1: नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं? अपना नाम बताइए और जगह का नाम बताइए।
0: मैं राकेश बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट शिमला, हिमाचल प्रदेश।
1: जी पूछिए, आपका सवाल पूछिए।
0: तो मेरा वकील साहब नमस्कार।
2: नमस्कार
0: सर, मेरा एक प्रश्न ये है कि जैसे कि पति पत्नी में विवाद इस तरह से होता है, जैसे कि अगर मान लो कि अगर पत्नी कहती है कि मुझे हम दोनों अलग रहना चाहते हैं, लेकिन जो है
1: आपके पीछे ना रेडियो चल रहा है, आप रेडियो थोड़ा रेडियो से दूर हो जाइए।
0: ओके ओके जी जी जी। तो मेरा ये प्रश्न ये है कि अक्सर लड़की ये चाहते कि हमारा छोटा परिवार हो, तो लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि हमारे जो पति देव है और उनके माँ बाप है, अगर वो हस्बैंड चाहता कि भाई मैं अपने माँ बाप को ना छोड़ू, तो ऐसे में फिर उनको क्या सलाह देना चाहते? क्योंकि देखो आप बीबी तो है, सबसे ज्यादा है माँ बाप ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इसके लिए मैं पूछना चाहता हूँ आपसे।
2: देखें, इसमें दो बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। पहले तो ये कि माँ बाप की सेवा, माँ बाप के जो भी आप वो हैं, रेस्पेक्ट करना, उनकी सेवा करना, उनकी ज़रूरत को पूरा करना, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपकी पत्नी की नहीं है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा, क्योंकि आपकी पत्नी की जो जिम्मेदारी है वो आप तक सीमित है। हाँ, पत्नी की ये जिम्मेदारी ज़रूर है कि अगर उस घर में रहती है तो वो आपके माँ बाप की इज्जत करे और उनकी जो भी सेवा कर सकती है करे, मगर आप उसको उसकी लायबिलिटी नहीं समझें। जिस दिन आपने ये चीज़, ये सोच आपने डेवलप कर ली कि मेरी पत्नी की लायबिलिटी नहीं है मेरे माँ बाप, उस दिन इस समस्या का समाधान हो जाता है।
1: एक और कॉलर है जो कुछ पूछना चाहते हैं। हेलो हेलो,
3: नमस्ते मैम।
1: नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं आप?
3: मैं नाम कुंदन कुमार पटना, 100% ब्लाइंड हूँ मैम।
1: ओके, आपका सवाल बताइए। ओके, तो ये तो हमारे कॉलर हैं, मुझे लग रहा है गलती से कॉल इनका लगा है, क्योंकि एक छोटी सी प्यारी सी आवाज़ है। और आज हम बात कर रहे हैं लीगल सॉल्यूशंस फॉर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट। सर, आगे मैं बात करना चाहती हूँ दहेज के ऊपर, क्योंकि दहेज एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से महिलाओं का उत्पीड़न बहुत ज़्यादा होता है, तो इस मामले में कानून क्या कहता है?
2: दहेज उत्पीड़न कानून की एक धारा है 498A और B
1: जी,
2: जिसके तहत ये तय किया जाता है कि दहेज कानून का उल्लंघन हुआ है और इसमें जो भी दोषी होता है उसको सजा का प्रावधान है। मगर आज सच्चाई ये है कि इस धारा का दुरुपयोग सबसे ज़्यादा हुआ है
1: जी।
2: और इस धारा में सिर्फ आज तक के जो रिकॉर्ड्स हैं वो 2% से ज़्यादा सज़ा नहीं हुई है, 98% इसमें सज़ा नहीं मिलती है।
1: ओके,
2: और ज़्यादातर इस कानून के तहत हुए विवादों का निपटारा को आउट ऑफ कोर्ट भी हो जाता है और सेटलमेंट के ज़रिए भी हो जाता है
1: जी।
2: तो ये कानून आपको ज़रूर इस धारा में प्रावधान प्रोविजंस हैं कि आप उस पर केस दर्ज कराइए, लेकिन इसका दुरुपयोग बहुत ज़्यादा हुआ है। आज के दौर में इस पर बहुत से जजमेंट्स आए हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, कि इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, और अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ भी केसेस किए जाते हैं, उनके खिलाफ भी केस दर्ज किए जाते हैं जो उत्पीड़न करता है
1: जी।
2: आज का जो माहौल है वो 498A को देखते हुए डराने वाला है, और इसके अंदर मैं ये कहूँगा कि इसमें संशोधन होना चाहिए और इसमें दर्ज केस दर्ज करने के पहले इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन ज़रूर होनी चाहिए
1: जी, जी।
2: जिससे कि कोर्ट में केसेस की पेंडेंसी कम होती है और लोगों को न्याय जल्दी मिल जाता
1: जी, है जी। ऐसा ही एक सवाल आया है राजेश कुमार चौहान का, जालंधर से। कहते हैं आजकल रिश्ते टूटने का कारण चाहे जो भी हो, लेकिन बहुत से लड़के इसीलिए कानून का सहारा नहीं लेते क्योंकि कुछ लड़की वाले दहेज का झूठा केस डाल देते हैं, और सुप्रीम कोर्ट को भी ऐसा लगता है और ये वो मान चुके हैं कि दहेज विरोधी कानून का दुरुपयोग होता है, तो ऐसे में लड़कों को इंसाफ कैसे मिल सकता है?
2: जी हाँ, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। इसमें जब हम कोर्ट में जाते हैं और हमारे ऊपर जो एलिगेशन लगाए जाते हैं, और आपका ये कहना

0: कि ज़्यादातर झूठे एलिगेशंस होते हैं, तो आप कोर्ट के सामने अपने सबूत पेश करें। इन्वेस्टिगेशन में जो इन्वेस्टिगेशन टीम होती है उसका सहयोग करें, उसको अपनी बात ज़रूर बताएं।
1: जी,
0: केस से भागना या कानून से भागना ये उपाय नहीं है। आपको कानून का सामना करना पड़ेगा और अपनी बातों को रखना पड़ेगा, उसमें आपको इंसाफ ज़रूर मिलेगा।
1: जी, रणधीर गुप्ता और बबीता रानी गुप्ता ओखला संगम विहार से कह रहे हैं, कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है और विषय भी अच्छा लिया है आपने, और साथ में जो जानकारी सर दे रहे हैं वो भी उन्हें काफ़ी पसंद आ रही है। आज हम बात कर रहे हैं मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स की और उनके लीगल सॉल्यूशंस की। यदि आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, साथ ही व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। 9868107070 है हमारा व्हाट्सएप नंबर।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
2: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
1: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
2: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
4: एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। प्रोग्राम चल रहा है रेनबो हेल्पलाइन और आज का हमारा विषय है लीगल सॉल्यूशंस फॉर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स। यदि आप भी किसी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में फंसे हैं, आपको लगता है कि आपको कानूनी सलाह की ज़रूरत है और आप अपनी बात शायद ढंग से अपने पेरेंट्स को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को नहीं बता पा रहे हैं, तो आप कानूनी सलाह ले सकते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री सैयद रेहान, जो एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट में बैठते हैं और वही आज इस विषय से रिलेटेड आपके सवालों का निदान करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, हमारा जो अगला सवाल है वो मैं चाह रही हूँ कि आजकल छोटे छोटे झगड़े तलाक तक पहुँच जाते हैं
5: जी।
4: तो इसके विषय में आप क्या कहेंगे, और यदि कोई आपसी सहमति से तलाक लेना चाहता है तो उसका क्या प्रोसेस होता है
5: जी? इसमें अगर कोर्ट में ये किसी का विवाद चल रहा है तो एक मीडिएशन सेंटर है, समाधान केंद्र, जो कोर्ट द्वारा बनाया जाता है और सबसे पहले इस तरीके के विवाद मीडिएशन सेंटर में भेजे जाते हैं और आपस में जो सहमति हो जाती है तो उसमें उनकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग एक सेटलमेंट एग्रीमेंट बनता है और सेटलमेंट एग्रीमेंट में दोनों पक्ष अपनी अपनी कंडीशंस को देखते हुए सहमति दर्ज कराता है और उसके बाद फिर मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग कोर्ट में आपसी सहमति से ये डिस्प्यूट ख़त्म हो जाता है अगर साथ रहना है। या ऐसे ही हिंदू पक्ष है अगर, तो हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग फिर ये सेटलमेंट ख़त्म हो जाता है और वो

0: बिना कोर्ट जाए ये विवाद आराम से सुलझ सकते हैं?
1: जी हाँ, इसके लिए समाधान केंद्र बनाए गए हैं, मेडिएशन सेंटर। आप वहाँ पे अपनी अपनी कंडीशंस के साथ सुलहनामा कर सकते हैं और उस सुलहनामा को लिखित रूप में मीडिएटर आपको देता है और आगे के आने वाले टाइम में ये समझौता एक दूसरे के लिए ढाल बनता है कि इस तरीके की दोबारा विवाद में ना जाए।
0: ओके सर, लेकिन यदि कोई आपसी सहमति से तलाक ना लेकर वो कोर्ट के थ्रू ही लेता है तो इस प्रक्रिया में कितना समय लग सकता है?
1: इसमें डाइवोर्स का सेक्शन है, तलाक अधिनियम धारा 13(1)(b) एंड 13(1)(c), उसमें कई धाराएं हैं जिसमें कि क्रुएल्टी आपको साबित करनी होती है, चाहे वो पति हो या पत्नी हो।
0: जी जी।
1: और वो क्रुएल्टी साबित करने के लिए उसके अंदर उस प्रावधान दिए गए हैं कि इन सेक्शंस में क्रुएल्टी साबित होती है और इन सेक्शंस में नहीं होती है। वो एक जटिल प्रक्रिया है, बहुत लंबा समय लगता है और इसमें कभी कभी 10 साल तक लग जाते हैं, 15 साल तक लग जाते हैं और दोनों के बीच डिफरेंसेस बढ़ते चले जाते हैं। तो इस प्रक्रिया के बजाय मैं ये कहता हूँ कि आपसी सहमति से तलाक हो तो आप टाइम बचा सकते हैं अपना और अपना घर भी बचा सकते हैं।
0: और हालांकि मुझे लगता है कि यदि तलाक की नौबत आप आने ही नहीं देंगे तो आपका परिवार सुरक्षित भी रहेगा और इसमें सबसे पहले जरूरत इसी बात की है कि आपस में बातचीत करें। संवाद और समझदारी बहुत ज्यादा जरूरी
1: बिल्कुल
0: है।
1: बिल्कुल, इसके लिए प्री लिटिगेशन काउंसिलिंग सरकार ने और हमारे वहाँ कोर्ट्स ने शुरुआत कर दी है। इसमें अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है लेकिन उम्मीद है कि आने वाले टाइम में कोर्ट में केस करने के पहले आपके आपसी विवाद को प्री लिटिगेशन सिस्टम द्वारा सुलहनामे के साथ ख़त्म किया जा सकेगा।
0: जी,
1: आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि इससे आधे से ज़्यादा केसेस उसी समय समाधान केंद्रों पर ख़त्म किए जा सकते हैं बिना कोर्ट में जाए।
0: जी अच्छा सर, जो पति पत्नी होते हैं और जब तलाक हो जाता है या उस प्रोसेस में होता है तो बच्चों के और पत्नी के भरण पोषण के मामले में कानून क्या कहता है? और जो जैसे एक होता है कि उन्हें मेंटेनेंस मिलती है या किस तरह से, वो मतलब क्या उसका प्रॉपर सिस्टम है?
1: जी, भारत के कानून में 125 CRPC हमें मेंटेनेंस का पूरा हक देता है कि हमें और हमारे बच्चों को, पति को भी देता है यह और पत्नी को भी देता है और साथ में बच्चों को भी देता है कि हम उनका भरण पोषण करें।
0: जी,
1: इसमें एक अनुभव ये भी रहा है मेरा कि अगर पत्नी कार्यरत है तो ज़्यादातर कोर्ट्स कार्यरत पत्नी को भरण पोषण नहीं देता लेकिन बच्चों को पूरा भरण पोषण देता है।
0: जी,
1: कभी कभी पति कार्यरत नहीं है, अनएम्प्लॉयड है, पत्नी कार्यरत है
0: जी।
1: तो कोर्ट पत्नी को भी ये डायरेक्शन देता है कि आप अपने पति का भरण पोषण तब तक करें जब तक कि वो दोबारा एम्प्लॉयमेंट उसको नहीं मिल जाता।
0: जी जी जी।
1: लेकिन इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेंटेनेंस से रिलेटेड।
0: जी,
1: कभी कभी सेटलमेंट जो हम मीडिएशन के ज़रिए कराते हैं उसमें फ्यूचर सेटलमेंट भी लेकर के आते हैं। फ्यूचर सेटलमेंट बच्चों के लिए कि जब वो बड़े हो जाएंगे तब हम उनको ऐसा अधिकार नहीं देंगे या आज की डेट में हम कोई उनको मेंटेनेंस नहीं देंगे, जबकि ऐसा फ्यूचर से रिलेटेड कोई भी भरण पोषण का अधिकार कोई किसी भी तरीके से रोका नहीं जा सकता और उस पर कंडीशन नहीं लगाई जा सकती किसी भी सेटलमेंट के समय।
0: जी,
1: इसमें बच्चों के 18 साल के होने के बाद बहुत से अधिकार मिल जाते हैं जिसको कि पति या पत्नी दोनों में कोई भी आपसी समझौते से ख़त्म नहीं कर सकता है।
0: ओके जी, मतलब फ्यूचर राइट्स इतने ज़्यादा हैं बच्चों की कि आप शुरुआत में उन सेटलमेंट यदि होती है या तलाक होता है तो वहाँ बच्चों के फ्यूचर को मतलब आप नहीं कहते कि वो सेटल हो जाएगा वहाँ।
1: जी हाँ, वो उनका अधिकार कानून देता है।
0: जी,
1: 18 और 21 साल के बाद वो बच्चे अपने कानून का पूर्णतः अधिकार रखते हैं।
0: okay.
1: अपनी अपने पिता की प्रॉपर्टी में, अपने दादा की प्रॉपर्टी में, इसी तरीके से अपनी माता की प्रॉपर्टी में
0: okay.
1: और अपने ग्रे

0: इन पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज में।
1: सर यहाँ एक सवाल मेरे जहन में और आ रहा है, आपने बोला कि जो वर्किंग वाइफ है उससे मेंटेनेंस नहीं मिलेगी, लेकिन मान लीजिए एक हम आजकल एक शब्द सुन रहे हैं एलिमनी, तो क्या मेंटेनेंस और एलिमनी एक ही चीज़ है या ये अलग अलग चीज़ हैं? और क्या वर्किंग वाइफ की स्थिति में जो वाइफ है वो एलिमनी के लिए बोल सकती है कोर्ट को, ये
0: जी
1: क्या
0: हाँ,
1: मतलब दोनों में क्या अलग है?
0: बिल्कुल अलग है दोनों। भरण पोषण अलग होता है, जो आपके नीड्स होती हैं डे टू डे नीड्स पूरी करनी होती हैं
1: जी
0: वो मेंटेनेंस में आता है, बच्चों के लिए भी और पत्नी के लिए भी।
1: ओके
0: कार्यरत पत्नियों के लिए भरण पोषण का अधिकार कोर्ट नहीं देता है,
1: ओके
0: क्योंकि वो अपना भरण पोषण कर सकते
1: कर
0: हैं।
1: सकती हैं।
0: अब आता है एलिमनी का सवाल। एलिमनी स्त्री धन को बोलते हैं, और स्त्री धन वो धन है जो कि उसके विवाहिक समारोह में उसको अपने इन लॉज की तरफ से या अपने पेरेंट्स की तरफ से मिलता है, और उस पर उसका पूरा अधिकार है। एलिमनी लेने का पत्नी का पूरा अधिकार है, कोई उसको रोक नहीं सकता, वो कोर्ट भी नहीं रोक सकता, कोर्ट भी देगा, और आपको कानून इस बात की अनुमति देता है कि आप अपनी एलिमनी का सवाल कर सकते हैं।
1: जी तो ये तो बात हुई एलिमनी और एलिमनी और मेंटेनेंस की। यदि आपकी वाइफ जो है वर्किंग है और तलाक चाहती हैं, तो लेकिन यदि इससे रिलेटेड आपका कोई भी और सवाल है तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं 0112342 1080 और 1084 पर।

0: एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइन पर, पूछते हैं इनका क्या सवाल है। हेलो
1: जी, मैं धर्मवीर गंगनी दिल्ली से बोल रहा हूँ
0: जी। पूछिए जल्दी से आपका सवाल पूछिए।
1: नमस्कार, मेरे छोटी छोटी दो बातें मेरी जिक्र है कि जैसे अगर किसी लड़का लड़की की शादी होती है और लड़की की बैकग्राउंड बाद में जाके पता चलती है कि इन लोगों का करेक्टर ठीक नहीं था और उनके कोई बेटा या बेटी हो जाती है, उसके बाद उनका मन मुटाव हो जाता तो वो अपने अलग घर में रहती है, ऐसे में लड़की क्या करे और लड़का क्या करे। और दूसरा एक सवाल और है, अगर किसी लड़की का कोई अफेयर पहले चल रहा है और शादी से पहले अगर शादी हो जाती है तो उसको नहीं पसंद, वो लड़का बैंक मैनेजर है, सरकारी बैंक मैनेजर, ऐसे में लड़की ने उसको पसंद नहीं किया, उससे तलाक ले लिया सरकारी बैंक मैनेजर होने के बाद भी, तो इससे हमें यही समझा जाएगा कि इसका बैकग्राउंड लड़की का पहले से लूज था।
0: ठीक है सर, सर बता रहे हैं, आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं। ठीक है,
2: देखें धर्मवीर जी, इसमें आपके दो सवाल हैं कि अगर आपको लड़की के बारे में शादी के पहले मालूम नहीं है कि उसका कैरेक्टर कैसा था, तो अगर आपके पास सबूत हैं तो आप क्रुएल्टी की बेसिस पे 13(1)(b) आप में उसमें सेक्शंस में आप तलाक के लिए अर्जी दे सकते हैं और इसमें आपको कोर्ट से न्याय मिलेगा। दूसरा सवाल है कि अगर उसने शादी होने के बाद भी अपनी चीज़ों को छुपाया और उसने दूसरे से अफेयर किया तो उसमें क्या करना चाहिए। उसमें भी मेरा यही कहना है कि क्रुएल्टी के लिए आप सेक्शन 13(1)(b) में आप कोर्ट में जा सकते हैं और उस बेसिस पे जिसमें कि आपके पास सबूत हैं कि उसने आप कैरेक्टर के बारे में जो आप कहते हैं कि ऐसा है, तो आप कोर्ट के सामने अपनी बात रख सकते हैं और कोर्ट उसमें उचित कार्रवाई करेगा।
0: सर एक सवाल मेरा, जो हम तलाक और आपसी सहमति की बात कर रहे थे, एलिमनी की बात हमने की, वहाँ पर एक सवाल और आता है कि जो बच्चे हैं उनकी कस्टडी किस तरह से निर्धारित की जाती है।
2: जी हाँ, इसके अंदर अगर बच्चा लड़की है
0: जी
2: तो उसमें माँ के पास कस्टडी दी जाती है जब तक कि वो बालिग नहीं हो जाती,
0: ओके,
2: एटलीस्ट 18 ईयर्स तक
0: जी,
2: ठीक है। और लड़के की कस्टडी कम से कम 9 साल तक माँ के पास होती है
0: जी।
2: 9 साल के बाद ये कस्टडी पिता को मिल सकती है।
0: क्या बच्चों की इच्छा भी निर्भर करती है कि मतलब बच्चे यदि थोड़े से बड़े हैं तो उनसे भी क्या पूछा जाता है कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं?
2: बच्चों की इच्छा भी पूछी जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पिता का या माता का अधिकार छीन लिया जाए
0: जी।
2: उनको बीच में एक टाइम लिमिट के साथ दिया जाता है कि वो माँ से मिले या पिता से मिले
0: जी। सर मैं, हमारे पास बहुत थोड़ा सा बचा है, यदि आपकी भी क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं 9868107070 पर।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: रेनबो हेल्पलाइन के आज के अंक में एक बार फिर से आपका स्वागत। आज हम बात कर रहे हैं लीगल सॉल्यूशंस फॉर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स। हमारे साथ जुड़े हैं श्री सैयद रेहान, जो एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में, और आपके सवालों का जवाब देने के लिए। सर, क्योंकि वक्त बहुत थोड़ा सा बचा है, तो मैं चाहूँगी कि चलते चलते आप हमारे लिसनर्स को, जो अभी भी अपने मन की बात हमारे साथ शेयर नहीं कर पाए, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
3: देखिए, अगर कोई विवाद हो जाता है तो सबसे पहले आप उसमें हेल्पलाइन से शिकायत कर सकते हैं। CAW सेल हर ज्यूरिसडिक्शन में, पुलिस स्टेशन में बनाया गया है, आप वहां अपनी बात कह सकते हैं किसी भी घरेलू हिंसा के लिए। और अगर वहां पर आपको न्याय नहीं मिलता है तो आप कोर्ट में भी अपना केस दायर कर सकते हैं अपने वकील के ज़रिए या इन पर्सन। दूसरी चीज़ ये कि आपको अगर सेटलमेंट करने का एक मौका दिया जाता है मीडिएशन में, जो कि कोर्ट से आपको ये फैसिलिटीज़ मिलती हैं, तो अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंग आप समझौता कर सकते हैं। मीडिएशन में आपको समाधान केंद्र के तहत ये सुविधा प्राप्त है, और हमेशा सरकार की तरफ से भी इस मामले में बताया जाता रहा है कि आप अपना विवाद समाधान केंद्रों द्वारा ख़त्म कर लें बजाय कोर्ट में जाने के।
2: जी, तो आज के रेनबो हेल्पलाइन में बस इतना ही। यदि आपको प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो आप बिंदास बोल में बता सकते हैं। तो सर, आज आप हमारे साथ जुड़े, आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, इतने सारे समाधान दिए हमारे लिसनर्स के सवालों का, और उन्हें सलाह भी दी कि कोशिश कीजिए कि लड़िए मत, झगड़ा मत कीजिए, और जुड़ जाइए आपस में एक बार फिर से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे अपने स्टूडियो में बुलाने के लिए।
2: थैंक यू सो मच। तो इसी के साथ रश्मि को दीजिए इजाजत। नेक्स्ट प्रोग्राम लेकर संतोष राव पहुंच चुके हैं, और प्रोग्राम रहेगा आशियाना।

0: आकाशवाणी।
1: जी हाँ दोस्तों, यह है आपकी वाणी आकाशवाणी और आकाशवाणी एफएम रेनबो पर। अब आपके साथ है आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव। दोस्तों ये समय होता है कार्यक्रम आशियाना का, और आज हम बात करेंगे आशियाना में उन रिश्तों की जो खून से नहीं बल्कि एहसास से बने हैं। जी हाँ, एहसास से बने हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, लेकिन हम आपको बता दें कि आकाशवाणी और हमारा एक ऐसा रिश्ता है जो इस एहसास को सार्थक करता है, और इसीलिए जब जब बात होती है आकाशवाणी की तो हम यही तो कहते हैं कि ये है आपकी वाणी आकाशवाणी। और यही वाणी जब कानों के माध्यम से दिल के दरवाजे पर दस्तक देती है ना, तो बनता है एक प्यारा सा रिश्ता दिल से दिल तक का, है ना। ठीक वैसे ही जैसे फूल का खुशबू के साथ, चांद का चांदनी के साथ और जल का धारा के साथ, यानी ऐसा रिश्ता जो निस्वार्थ भाव से 90 साल के 32,850 दिन और 7,88,000 जी हाँ घंटे नॉन स्टॉप देश सेवा के लिए प्रेरित करता रहा। जी हाँ, हालात चाहे बाढ़ के हों या तूफान के, लॉकडाउन जैसी परिस्थितियां हो या अंतरिक्ष में जाने का होड़ हो, हर समय यही रिश्ता बांधे रखता है जब स्टूडियो से हम जैसे एंकर की आवाज सुनाई देती है, ये कहते हुए कि ये आकाशवाणी है और आकाशवाणी के एफएम रेनबो पर आप हमारे साथ हैं और हम हैं आपके साथ, क्योंकि आप हमारे और हम आपके दिल में रहते हैं, और इसीलिए जमाना इस बात को भी मानता है कि तुमसे अच्छा

90 सालों से आकाशवाणी हर उम्र के लोगों की रही है पहली पसंद। और जब जब इकरार करने का मौका मिला है ना, तो लोगों के लबों पर यही बोल आए कि तुमसे अच्छा कौन है।

दोस्तों, रिश्ते में सबसे बड़ी बात होती है विश्वास की, और जो इन 90 सालों में आकाशवाणी ने लोगों का विश्वास जीता है वो अपने आप में एक अद्भुत सफर है। और इस सफर में कई ऐसे धुरंधर आए, जी हाँ, कई ऐसे धुरंधर आए जिन्होंने आकाशवाणी की साख पर 4 चांद लगा दिए। और आज के आशियाना प्रोग्राम में हम बात करेंगे ऐसे 3 धुरंधरों के बारे में जिन्होंने अपनी आवाज और अंदाज से न सिर्फ लोगों का दिल जीता बल्कि ये साबित भी कर दिखाया कि जब आकाशवाणी का साथ हो तो आपको मुकद्दर का सिकंदर बनने से कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों, भारत की आजादी के बाद जब आकाशवाणी पर समाचार बुलेटिनों का सिलसिला प्रारंभ हुआ ना, तो हमारे दिल्ली स्टेशन पर अच्छी और मधुर आवाजें ढूंढने की पहल शुरू हुई, और उस वक्त उम्मीदवारों की संख्या थी 3000। जी हां, उस वक्त की बात कर रहा हूं मैं, 3000। और जब फरवरी 1948 में इन उम्मीदवारों में से समाचार वाचकों का चयन किया गया तो सबसे ऊपर नाम पता किसका था? जी हां, नाम था देवकी नंदन पांडे का, जिनकी आवाज जैसे ही समाचारों में सुनाई देती कि अब आप देवकी नंदन से समाचार सुनिए, तो राह चलता हुआ राही भी कुछ मिनट रुककर ना समाचार जरूर सुनता था। जी हाँ, कानपुर में पैदा हुए देवकी नंदन के पिता शिवदत्त पांडे अपने क्षेत्र के जाने माने डॉक्टर थे। मूल रूप से पांडे कुमार परिवार जो था वो कुमायूं का रहने वाला था, और शायद यही वजह थी कि देवकी जी के स्वर में एक पहाड़ी खनक सुनाई देती थी। देवकी नंदन पांडे जी की आरंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में हुई, और 40 के दशक में अल्मोड़ा जैसी जो छोटी जगह थी ना, वहां पर सिर्फ और सिर्फ केवल 2 रेडियो हुआ करते थे, एक स्कूल के अध्यापक जोशी जी के घर और दूसरा एक व्यापारी थे शाह जी के घर। युवा देवकी नंदन पांडे जी को दूसरे महायुद्ध के समाचारों को सुनकर बहुत रोमांच होता था, और वे सब कुछ मतलब अपना सारा काम धाम छोड़कर समाचार सुनने बैठ जाया करते थे। और उन दिनों जर्मनी रेडियो के 2 प्रसारकों लॉर्ड होहो और डॉक्टर फारूकी का बड़ा नाम हुआ करता था, और दोनों लाजवाब प्रसारण करता थे। उनकी आवाज हमेशा देवकी नंदन पांडे जी के दिलो दिमाग पर छाई रही, और उन्हीं का अनुसरण करते हुए देवकी नंदन पांडे जी ने आकाशवाणी पर समाचार प्रसारण का शुरू किया एक नया ट्रेंड। दोस्तों, देवकी नंदन पांडे को अपनी शख्सियत की लोकप्रियता का अंदाज उस दिन लगा जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक बार आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्टों को उनकी समस्या सुनने के लिए अपने निवास स्थान पर आमंत्रित किया था। श्रीमती गांधी से जब देवकी नंदन पांडे का परिचय करवाया गया तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि अच्छा, तो आप हैं हमारे देश की न्यूज वॉइस। इतना ही नहीं, पूर्व सूचना प्रसारण मंत्री विद्याचरण शुक्ल तो एक बार देवकी नंदन पांडे जी का नाम सुनकर उनसे गले लिपट गए थे। नए समाचार वाचकों के बारे में पांडे जी से जब पूछा जाता था तो वो यही कहते थे कि जो भी करो श्रद्धा ईमानदारी और मेहनत से करो, हमेशा चाक चौबंद और समसामयिक घटनाक्रम पर जो है जानकारी उसको रखा करो, जितना ज्यादा सुनोगे और पढ़ोगे उतना अच्छा आप बोल सकोगे, किसी शैली की है ना नकल कभी मत करो, कोई गलती बताए तो उसे सर झुकाकर स्वीकार करो, बताने वाले के प्रति अनुग्रह का भाव रखो, निर्दोष और सोच समझकर पढ़ने की आदत डालो, आत्मविश्वास आता जाएगा और पहचान आपकी बनती जाएगी। और यही सब कुछ उन्होंने अपने जीवन में उतारा था। सरल स्वभाव के आकाशवाणी के प्रसिद्ध समाचार वक्ता देवकी नंदन पांडे का वर्ष 2001 में निधन हो गया था। बेशक आज वो नहीं रहे, मगर उनकी आवाज और शैली हमेशा आकाशवाणी के गलियारों में गूंजती रहेगी।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

0: योजना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
2: पता का चाय, गजब का स्वाद।
3: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
4: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
3: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
4: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
5: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो विद SR बोले तो संतोष राव। प्रोग्राम चल रहा है आशियाना। दोस्तों जब खत की बात होती है ना तो वो याद आ जाते हैं संस्मरण, जब 1999 में मैंने आकाशवाणी ज्वाइन किया था एज ए रेडियो जॉकी, और उस वक्त है ना ढेर सारे पत्र आया करते थे और पत्रों में दिल की बातें लिखा करते थे। वो खत आज भी मेरे पास है, मौजूद है, बहुतों के पास ऐसे खत मौजूद होंगे, और उन खतों को भी जब जब देखा जाता है ना तो याद ताजा हो जाती है, आकाशवाणी का धन्यवाद देने लगते हैं, शुक्रिया अदा करने लगते हैं, है ना। और दोस्तों जब अब हम है ना उन धुरंधरों की बात कर रहे हैं आज के इस प्रोग्राम में आशियाना में, जैसे कि अभी देवकी नंदन पांडे जी की बात की है, और अब उस धुरंधर की बात हम करने जा रहे हैं जिनको कोई रेडियो जनक कहता है तो कोई आवाज का जादूगर। जी हम बात कर रहे हैं जाने माने ब्रॉडकास्टर अमीन सयानी जी की। वैसे रेडियो की बारीकियां सीखने का सौभाग्य मुझे उनके साथ मिला है, और उनके व्यक्तित्व और बात करने का अंदाज इतना आकर्षक था कि ऐसा लगता था कि वो रेडियो के लिए ही ईश्वर ने उनको तराश कर इस धरती पर भेजा था। आकाशवाणी FM रेनबो पर कुछ साल पहले एक प्रोग्राम आया करता था ऑन एयर मेहमान, जिसमें ये सौभाग्य मिला था कि हम उनसे मुलाकात करके अमीन सयानी जी से हमने लाइव बातचीत की थी उस प्रोग्राम में। तो आइए उनको आपको सुनाते उस बातचीत का कुछ हिस्सा, क्योंकि आकाशवाणी में बहुत से लोगों का योगदान रहा है, उन्हीं में से एक है अमीन सयानी जी। अमीन सयानी जी कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: भाई स्वागत की जरूरत नहीं है, मैं वैसे रेडियो में अपना घर है बिल्कुल
1: जी जी,
2: बल्कि मैं तो 7 साल की उम्र में ऑल इंडिया रेडियो में पैदा हुआ था, करियर मेरा मतलब ये
1: जी बिल्कुल। बच्चा बच्चा जानता है आपकी आवाज से वाकिफ है, और हर कोई इंसान जब भी कोई भी आवाज सुनता है तो वो तुलना करता है कि आपकी आवाज से, क्योंकि सबका अंदाज कहीं ना कहीं से आपकी आवाज से जरूर मिलता है।
2: अब क्या है कि आप सवाल पूछे तो मैं जवाब दूं
1: जी। सबसे पहले एक बात हम आपसे जानना चाहेंगे।
2: हाँ।
1: क्योंकि जब मैं यहाँ स्टूडियो आ रहा था
2: हाँ।
1: तो मैं लोगों से बात कर रहा था कि आज मैं जाकर इंटरव्यू करने वाला हूँ आपका।
2: हाँ।
1: जब मैंने उनको बताया तो उन्होंने सबने कहा अमीन सयानी जी से आप बात कर रहे हो। तो एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपका नाम है अमीन सयानी जी, लेकिन अक्सर सभी लोग कहते हैं सयानी।
2: वो क्या है, इंग्लिश में ऐसे YNI लिखता हूँ ना
1: जी,
2: तो उससे वो सयानी हो गया
1: जी। लेकिन
2: तो, मगर जब भी मैं बोलता हूँ रेडियो पर अपना नाम तो सयानी ही बोलता हूँ
1: जी। लेकिन कभी अगर जब गलत नाम लिया जाता है
2: हाँ।
1: जब आप सुनते हैं गुस्सा आता है आपको?
2: भाई गुस्सा नहीं आता, मतलब हंसना आता है कि भाई मैं सयानी नहीं हूँ, मैं सयाना हूँ।
1: जी जी
2: ये नाम मेरा है सयानी
1: जी।
2: तो भाई ठीक है, वो गलती लोग करते हैं, करने दीजिए, कोई बात नहीं,
1: मतलब कोई बात नहीं,
2: सही नाम सयानी है। और संतोष जी से मैं यही एक्सपेक्ट करूंगा कि मेरा सही नाम बोले।
1: बिल्कुल कोशिश करूंगा मैं भी सर, क्योंकि बचपन से मेरी भी आदत पड़ी हुई है सयानी जी बोलने की।
2: गलत आदतें जब पता चल जाए कि गलत है तो फौरन बदल लेना चाहिए
1: जी। बिल्कुल बिल्कुल कोशिश यही करूंगा कि आपसे जब भी मुखातिब होऊंगा तो आपको अमीन सयानी जी बोलूं।
2: आप महज अमीन भाई कहें
1: सर, मैं बहुत छोटा हूँ आपसे,
2: अमीन अंकल कहें तो भी चल जाए।
1: अच्छा तब ठीक है। अच्छा एक बात, सबसे पहले एक बात जानना चाहेंगे आपसे, अमिताभ बच्चन को एक्टिंग का शहंशाह कहा जाता है, तो वहीं आपको आवाज की दुनिया का बादशाह। जब जब आपके लिए ऐसा कहा जाता है तब तक आपका दिल क्या कहता है?
2: मेरा दिल ये कहता है कि लोग क्यों खामखा मुझे इतने ऊंचे पेड़ पर चढ़ाते हैं
1: जी।
2: सवाल ये है कि मैं तो हमारे जितने भी सुनने वाले मेरे हैं उनको अपने परिवार का सदस्य समझता हूँ, तो मुझे बादशाह वादशाह मत बनाइए भाई, वैसे भी डेमोक्रेसी का जमाना है, मुझे अपना नुमाइंदा बना ले तो भी चलेगा, अपना भाई अंकल जो भी आप कहना चाहें, और उम्र कम हो तो दादाजी भी चल जाएगा।
1: बहुत खूब। अच्छा एक बात हम आपसे जानना चाहते हैं सर,
2: बोलिए,
1: इस मुकाम को हासिल करने के लिए लगन मेहनत के अलावा ऐसा और क्या है जो आपको हर परिस्थिति में आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित करता रहा है?
2: भाई इसकी जो राज की बात यह है कि मैं पैदा हुआ एक ऐसे परिवार में जो कि हमारी जो आजादी का जो आंदोलन था
1: जी,
2: उसमें बहुत गहरे उतरे हुए था, और उस जमाने के बड़े बड़े लीडर्स से बड़ा संपर्क था हमारे परिवार का, गांधी जी और पंडित नेहरू, अबुल कलाम आजाद और सरदार पटेल, और ये तमाम लोग यानी मैं इन सबको मिल भी चुका हूँ जब मैं छोटा बच्चा था, या तो उनके कदमों में बैठा हूँ या उनके करीब खड़ा रहने का मुझे मौका मिला है, और दो

0: तो ऐसे स्कूल में मैंने पढ़ाई की जो कि बड़े नेशनलिस्ट स्कूल थे
1: जी।
0: एक तो था न्यूरा स्कूल बम्बई
1: जी, जी।
0: जिसमें मैंने गुजराती पढ़ी 7 बरस, और एक था जहाँ आखिरी मेरे 2.5 साल स्कूल के बीते, सिंधिया स्कूल ग्वालियर।
1: अच्छा,
0: ये दोनों स्कूलों में जो मेरे शिक्षक थे, जो माहौल था पूरा, वो ऐसे ऐसा बिल्कुल नेशनलिस्टिक था कि भाई भारत के बारे में अच्छी अच्छी बातें, बड़े बड़ों की बातें, संतों साधुओं की बातें
1: जी।
0: और कुछ कहीं श्लोक, कहीं आयतें, कहीं कहावतें, ये सब हमारी तालीम का एक छोटा सा हिस्सा था
1: जी, जी।
0: और बल्कि बेसिस था। और सबसे बड़ी बात हमने ये भी सीखी कि भाषा का प्रयोग अच्छी तरह से करना
1: जी।
0: हालांकि अपने न्यूयॉर्क स्कूल में मैंने गुजराती और अंग्रेजी सीखी, और ग्वालियर में अंग्रेजी में ज्यादातर काम होता था, लेकिन साथ ही साथ थोड़ी सी उर्दू हिंदी भी वहाँ ग्वालियर जाकर और जरा पॉलिश होने लगी। और मुंबई में जब मैं रहा, इतने वर्षों पैदाइश यहीं की है, यहाँ तो कई भाषाएं चलती थी ना
1: जी।
0: अब गुजराती तो मैं पढ़ ही रहा था, बहुत अच्छी तरह बोल लेता था, बल्कि लिखता भी गुजराती में था, सोचता भी गुजराती में था, और बल्कि गिनता भी गुजराती में था।
1: अच्छा,
0: और तुर्रा ये है कि आज तक गुजराती में ही गिनता हूँ, लेकिन गिनने के लिए ज्यादा पैसे नहीं है।
1: अच्छा, इसीलिए
0: बाकी भाषाएं भी यहाँ, अब जैसे रविंद्र संगीत से मुझे बहुत प्यार था, हमारे बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका ताल्लुक शांति निकेतन से रहा था, तो ये ऐसे उस्तादों से मैंने बहुत रविंद्र संगीत सुना। फिर मराठी के बहुत सारे शिक्षक थे
1: जी।
0: तो हमने मराठी की आरतियां और मराठी के कुछ गीत सीखे, और इस तरह से बहुभाषी एक माहौल सा बन गया। अब उसमें सबसे बड़ी बात यह हुई कि मेरी अम्मा जो थी वो गांधी जी की शिष्या थी।
1: अच्छा,
0: और अम्मा काम करती थी प्रौढ़ शिक्षण में, एडल्ट एजुकेशन में। तो गांधी जी ने उनसे कहा कि बेटे तुम एक काम करो कि हम हिंदुस्तानी को, सरल हिंदुस्तानी को बनाना चाहते हैं भारत की राष्ट्रभाषा
1: जी,
0: ताकि सब उसे प्यार से बोले, समझे, और ये भाषा आगे बढ़े, फले फूले, और तमाम भाषाओं की जितनी अच्छाइयां हैं वो अगर हिंदुस्तानी के जामे में, पहनावे में अगर वो अच्छी तरह से फिट हो जाए तो उसको भी आने दें
1: जी।
0: ताकि ये जैसे कि हिंदी, अंग्रेजी जबान भी कई भाषाओं से मिलकर फली फूली है
1: जी।
0: और बंगाली और मराठी का भी यही हाल है कि इन्होंने कभी अपने दरवाजे बंद नहीं किए
1: जी, जी,
0: खुले रखे
1: जी।
0: इसलिए बहुत सारे और भाषाओं के शब्द भी इसमें आते रहे, तो वो चाहते थे कि हिंदुस्तानी भाषा बने, हिंदी उर्दू का सरल रूप, और उसमें जितनी भी चीजें आराम से हिंदुस्तानी में ढल सके ढल जाए। और यही देखिए, आप सोचें, यही भाषा थी जो कि हिंदुस्तानी फिल्मों और फिल्मी गीतों की भाषा थी
1: जी, जी, जी।
0: तो ये भाषा, इसका प्रचार करने के लिए उन्होंने अम्मा से कहा कि बेटे तुम एक अखबार, एक फोर्टनाइटली जर्नल शुरू करो घर से
1: जी,
0: जो कि एडिट भी वहाँ हो, पब्लिश भी वहाँ हो, और जो 3 लिपियों में अलग अलग जिसकी प्रतियां हो, देवनागरी यानी हिंदी स्क्रिप्ट, उर्दू स्क्रिप्ट और गुजराती स्क्रिप्ट
1: जी, जी।
0: लेकिन तीनों में भाषा लाइन टू लाइन एक ही हो, सरल हिंदुस्तानी।
1: अच्छा, वाह।
0: अब तो वो शुरू हुआ, बाद में प्रिंट भी होने लगा घर पर ही, छोटा सा प्रेस भी आ गया। तो हम मुझमें ये शौक पैदा हुआ कि यार गुजराती बहुत पढ़ी, अंग्रेजी बहुत पढ़ी, अब जरा हिंदी भी तो जरा ज्यादा पढ़े। वो मैंने कहीं हिंदी उर्दू सीखी नहीं थी।
1: अच्छा,
0: तो फिर वहीं से सीखते सीखते जानते जानते बहुत बड़ी अच्छी अच्छी चीजें उसमें आती थी, बड़े अच्छे अच्छे कंट्रीब्यूटर्स थे, तो धीरे धीरे मुझे हिंदी का ज्ञान होता रहा और सरल लेने का। हाँ
1: जी।
0: और इस तरह से मैंने अपनी भाषा को संवारा, बिल्कुल सीधी सादी, आम फहम, सरल हिंदुस्तानी से।
1: आपका अंदाज, आपकी प्रस्तुति हमेशा लोगों को भाई है, और आप बातचीत में जिस तरह से हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, गुजराती भाषा का मिश्रण करते रहे हैं और बखूबी करते रहे, लोगों को भाते रहे हैं, आज इसका आधार हमारी समझ में आया है।
0: मैंने कोशिश ये की कि जो भी बोलूं कम से कम सही बोलूं,
1: सही बोलूं
0: और आसान बोलूं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग समझें।
1: जी
0: तो ये अगर सब लोग आजकल के जितने भी अनाउंसर हैं और खासकर रेनबो के
1: जी
0: उनसे उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि बेटों और बेटियों जरा जम के भाषा बोलना सीखो सही, और सीधी सी आसान सी प्यारी सी मीठी सी भाषा बोलो तो ज्यादा से ज्यादा लोग समझेंगे।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी सी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
2: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
3: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए 5 यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
2: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें, विजिट करें registration.tourist.uk.gov.in।
3: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
4: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे आकाशवाणी एफ एम रेनबो विथ एसआर, एसआर बोले तो संतोष राव। घड़ी मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। दोपहर के बज रहे हैं 2:45 और 40 सेकंड। प्रोग्राम है आशियाना। और दोस्तों अभी आपने गीत सुना दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, और ये गीत है ना ये तुझे देखा तो ये जाना सनम। दूरदर्शन पे जब ये आवाज आती थी इंग्लिश न्यूज में तो वही सब लोग कहते थे वाओ क्या बात है। लुक वाइज भी देखा जाए और आवाज भी है ना मधुर आवाज थी। जी हाँ, क्योंकि ये प्रोग्राम है आशियाना और हम आपको बता देंगे प्रोग्राम क्यों है खास, क्योंकि आज के हमारे आशियाने में उन धरंधरों की हम बात कर रहे हैं जिन्होंने आकाशवाणी के 90 सालों के सफर में निभाई है अहम भूमिका। और जिसकी बात मैं कर रहा था वो है रिनी साइमन खन्ना, हमारे साथ फोन लाइन पर है, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो
1: हेलो,
0: नमस्कार रिनी जी, कैसी हैं आप?
1: बिल्कुल ठीक ठाक। मैं इस वक्त आकाशवाणी की सभी श्रोताओं को मेरा हर भरा नमस्कार देना चाहती हूँ, और खास उन सभी साथियों के लिए है ये बहुत बड़ा तोहफा या आप कहेंगे जिक्र जो हम करना चाहते हैं, जिनकी हम आवाज शायद कभी नहीं सुनते हैं और चेहरे तो बिल्कुल नहीं देखते हैं, पर उनकी वजह से ही आप और हम आज घर घर में आने जाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो रिनी थैंक यू बोलना चाहती हूँ।
0: जी रिनी जी, क्योंकि आपका तो चेहरा दूरदर्शन पे दिखाई देता रहा है और काफी हम तो बहुत बड़े फैन आपके रहे हैं, आपकी आवाज थोड़ा सा कट कट कर आ रही है, तो अगर थोड़ी सी आप इधर हो जाए ताकि सिग्नल थोड़ा सा और क्लियर हो जाए और हम आपसे ढेर सारी बातें कर सके।
1: जी, बट बिफोर यू टॉक अबाउट दूरदर्शन, संतोष जी मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरी नींव, मेरी फाउंडेशन आकाशवाणी में ही हुई थी, और आकाशवाणी में मेरा पहला पहचान हुआ, उसके बाद दूरदर्शन आया।
0: बिल्कुल, क्योंकि कहा जाता है कि जब 13 साल की आप थी तो आपने ऑल इंडिया रेडियो के युवा वाणी कार्यक्रम से अपने करियर की शुरुआत की थी, सही?
1: बिल्कुल बिल्कुल सही।
0: अच्छा वो सन कौन सा था?
1: शायद 80 या 79। इस टाइम पे मैं स्कूल में थी और मेरी एक्चुअली सबसे पहला पब्लिक शो हुआ था जहाँ पे लोगों ने मेरे को मतलब बहुत बधाई दी, और उस उन दिनों में एक कंपटीशन होता था, नेशनल लेवल पे कंपटीशन होता था कॉल्ड शंकर्स इंटरनेशनल, और ये ज्यादातर पेंटिंग के लिए होता था पर स्पोकन वर्ड के लिए भी एक भाग था, तो उस स्पोकन वर्ड में मेरे को गोल्ड मेडल।
0: ओ वाओ क्या बात है।
1: जो थे वसंत साठे जी, उन वो थे चीफ गेस्ट, और उन्होंने जब मेरी आवाज सुनी तो उन्होंने बोला बच्चे आप आपको तो रेडियो पे होना चाहिए। तो मैंने कहा मुझे तो पता नहीं है कैसे करूं मैं रेडियो पे, तो जो कवर करने आए थे वो फंक्शन को रेडियो की टीम, उन्होंने उनको बोला कि आप इनको तुरंत युवावाणी में डालिए और इनकी इनका मतलब वहां पे काम शुरू करवाइए। तो इस तरह से मेरा काम युवावाणी में शुरू हुआ।
0: अच्छा, क्योंकि युवावाणी कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है आकाशवाणी में जिसमें युवाओं को चांस दिया जाता है और शुरुआत भी वही होती है, हम कह सकते हैं कि पहला पायदान जो होता है ना, फर्स्ट स्टेप जो होता है रेडियो में आने का, वो युवावाणी प्रोग्राम होते हैं।
1: बिल्कुल,
0: मुझे भी याद है,
1: जी बोलिए,
0: मुझे भी याद है जब मैंने ये कार्यक्रम शुरू किया था तो एक टॉपिक

0: के साथ किया था, आपको याद है वो टॉपिक?
1: प्रोग्राम शुरू हुआ था बाय डूइंग अ फीचर, और उस टाइम पे टेप रिकॉर्डर दिए जाते थे हमारे को, छोटा सा एक बक्सा था जिसमें आप टेप डाल के आप माइक्रोफोन, आपको एक एक्सटेंशन जैसे होता था वो मिल जाता था, और उसके ऊपर आपने रिकॉर्डिंग्स करके वापस आकाशवाणी के स्टूडियो में आके उसको एडिट करके स्क्रिप्ट लिखना सीखते थे आप, और आपको ये कहा जाता था कि भई ये पढ़ के आप सुनिए ताकि टाइम के अनुसार आप स्क्रिप्ट लिखोगे। तो आपने जो प्रोग्राम बनाया उसको कैसे आप अरेंज करोगे, उसमें इंटरव्यूज हैं, साउंड बाइट्स हैं, ये सब आप सीखने को मिलता था, और ये प्रैक्टिकल तौर पे सीखने को मिलता था, सिर्फ आप गेस्ट बन के और कोई और प्रोग्राम बना रहा वो नहीं होता था। तो इसलिए कि भाई आप इफ यू हैव टू बी अ गुड ब्रॉडकास्टर यू मस्ट नो द निटी ग्रिटीज ऑफ पुटिंग अ ब्रॉडकास्ट टुगेदर।
0: जी,
1: मतलब अगर आप गाड़ी सीखना चाहते हो तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि बैटरी कहाँ होता है, आपको टायर के अंदर कितना प्रेशर होना चाहिए, पेट्रोल कहाँ डाला जाता है, स्टार्ट कैसे करते हो, बंद कैसे करते हो, एक्सेट्रा। तो ये सब इंफॉर्मेशन और नॉलेज और ट्रेनिंग दिया जाता था आपको युवावाणी में।
0: जी, तो अच्छा, आपने जो कार्यक्रम शुरू किया था वो हिंदी भाषा में किया था या अंग्रेजी भाषा में?
1: नहीं, मैं हिंदी आपके साथ बोल रही हूँ, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, और मैं जानती हूँ कि मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, पर पढ़ती हूँ, लिखती हूँ कभी कभार, और काफी वॉइस ओवर्स किए हैं मैंने हिंदी में। तो हिंदी मतलब कोई भी भाषा सीखने में इतनी डिफिकल्टी नहीं है, सिर्फ ये है कि आप जब इस्तेमाल नहीं करते हो इस तरह से, आपकी वोकैबुलरी इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो आप उसमें ना प्रवेश करें तो अच्छा है। तो इंग्लिश में ही मैं प्रोग्राम्स करती हूँ, और इंग्लिश में ही मेरा ज्यादा पकड़ है, आप कह सकते हैं।
0: अच्छा रीनी जी, आकाशवाणी के साथ आपका बहुत लंबा सफर रहा है और आज भी आप जुड़ी हुई हैं, जब आप इस सफर को देखती हैं तो बहुत सी यादें जहन में आ जाती होंगी, कुछ शेयर करना चाहेंगी?
1: बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपका एक बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि आपने मेरे को ऐसे एक प्रोग्राम में आमंत्रित किया जहाँ आपने देश के सबसे ऊंचे कद के प्रसारकों में से दो का उल्लेख किया, और दोनों के साथ मेरा काम करने का सौभाग्य हुआ था। तो मैं ये तो मेरे लिए सचमुच बहुत बड़ा सम्मान है कि मेरा नाम उनके साथ भी लिया जा रहा है। और एज फार एज मेमोरीज आर कंसर्न्ड, देखो एक एक चीज मेमोरी है, और आकाशवाणी के स्टूडियोज में जब हम काम करते हैं तो वहां पे इतने बड़े बड़े लोग आए, उन्होंने काम किया, उन्हीं के साथ आपने कंधा मिला के काम किया, तो बहुत बड़ा यू नो इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट, और उनके कदमों में चलना और उनके साथ सीखना वो कैसे ब्रॉडकास्ट करते हैं, वो कैसे एक प्रोग्राम को अप्रोच करते हैं, उनके टूल्स क्या है। देखो आप और हम के टूल तो यही है ना, हमारी आवाज। तो आप अपनी आवाज को कितना मधुर बना सकते हो, कितना अच्छा आप बोल सकते हैं और लोगों के दिल में समा सकते हो, वो एक आर्ट है, और वो कला सीखने के लिए अगर आपके पास उस्ताद हैं या मास्टर्स हैं तो इससे बड़ा देन तो है ही नहीं।
0: बिल्कुल।
1: तो मेरे लिए न्यूज रूम में हो या स्टूडियोज में हो, जहाँ पे अनाउंसमेंट होती थी या हम कमेंट्रीज करते थे, हर एक प्रोग्राम में, हर एक भाग में मौका मिला कि भाई हम दूसरों से सीखें और अपनी कला को पॉलिश करें, अपनी कला को होन करें, कि भाई हम भी उन सब दिग्गजों के साथ गिने जा सके।
0: जी, क्योंकि
1: जी
0: बोलिए बोलिए।
1: नहीं, मेरा ये कहना था कि इवन अ सिंपल गुड मॉर्निंग जो होता है, या इवन अ सिंपल दिस इज ऑल इंडिया रेडियो कहने के लिए बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है, एंड टू मेक श्योर कि आप वही टोन में, वही अंदाज में लगातार 90 साल बोले, और उसमें भी आपका एक अलग पहचान हो, वो एक बहुत बड़ा
0: अचीवमेंट होता है
1: जी,
0: और इसीलिए ये प्लेटफॉर्म आकाशवाणी देता है उन उभरते हुए कलाकारों को भी जिनके अंदर हुनर होता है, और इसीलिए हर कलाकार गर्व करता है आकाशवाणी पर।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा।
0: अगर आकाशवाणी का रेडियो या दूरदर्शन नहीं होता तो आज रिनी अपने आप को कहाँ पाती?
1: कहीं ना कहीं जहाँ लोगों के साथ मैं जुड़ पाऊँ, क्योंकि आई थिंक वी ऑल आर बॉर्न विद अ पर्पस, और मेरा पर्पस तो सिर्फ ये था कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ जुड़ूं। आपको ये भी शायद पता होगा कि आकाशवाणी के साथ और दूरदर्शन के साथ तो मेरा मतलब करियर जुड़ा ही है, पर मैं लोगों के दिलों के साथ इस तरह से भी जुड़ी हूँ कि सारे मेट्रोज में इंग्लिश की अनाउंसमेंट जो होती है वो मेरी आवाज में होती है। एयरटेल जब आया था, सबसे पहले जो सेल्युलर टेलीफोन सिस्टम आया था उसमें भी मेरी आवाज ही थी, तो एयरटेल की आवाज में मेरी थी, MTNL में है, BSNL में है, कई कई कंपनियों में है मेरी आवाज, तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा एक हम्बल टोकन है कि भाई मैं किसी भी सर्विस के लायक हूँ, और लोगों से मुझे बहुत प्यार मिला। दे आर वेरी पेशेंट to listen to me and they are very fond of listening to me. मुझे कभी कभी लगता था कि भाई हर जगह, जैसे कभी कभी मेरा बेटा जो है वो बोलता था कि माँ आपकी आवाज हर जगह है, आप पीछा क्यों नहीं छोड़ती हो, मतलब मैं टेलीफोन उठाता हूँ तो आप हैं, मैं मेट्रो में जाता हूँ तो आप हैं, कभी कभार तो एयर इंडिया की फ्लाइटों में भी आपकी आवाज आती है, फिल्मों में भी आपकी आवाज आती है, तो मैं थक चुका हूँ। तो इस तरह से मैं कभी कभी सोचती थी कि क्या लोग इस तरह से सोचते हैं, और कभी मैं पूछती भी थी कि भाई आप थक तो नहीं गए हो मेरी आवाज सुन के, और लगातार कोशिश ये रहती है कि आपकी आवाज लोगों को बोर ना करे।
0: बिल्कुल,
1: आप जो कहते हो वो लोगों को अच्छा लगे और बुरा ना लगे,
0: और सब का क्रेडिट जाता है आकाशवाणी को, है ना,
1: और भगवान का
0: जी जी भी।
1: अच्छा, तो बहुत, बहुत बड़ा दान,
0: बहुत अच्छा लग रहा है, आपकी आवाज हम बहुत सुनते रहे हैं और सुन भी रहे हैं, तो क्योंकि समय हमारे पास अब कम बचा हुआ है, तो दिल्ली मेट्रो की थोड़ी सी उद्घोषणा हो जाए जैसे आप करती हैं।
1: दिस इज दिल्ली मेट्रो, आई होप दैट योर जर्नी विद आकाशवाणी हैज बीन वंडरफुल, प्लीज माइंड द गैप बिटवीन दिस स्टेशन एंड द नेक्स्ट।
0: वाओ, क्या बात है। अच्छा, जब आप आकाशवाणी पे न्यूज पढ़ा करती थी, जैसा कि आपने जिक्र भी किया था कि जो पहली आवाज होती थी, जैसे देवकी नंदन पांडे जी कहते थे, अब आप देवकी नंदन पांडे से समाचार सुनिए, मैं नकल करता हूँ ऐसे ही बोलने की, ये आकाशवाणी है, अब आप संतोष राव से समाचार सुनिए, आपकी वो अंदाज, आपका जो मधुर आवाज थी, वो हम सुनना चाहते हैं जाते जाते।
1: दिस इज ऑल इंडिया रेडियो, द न्यूज रेड बाय रीनी साइमन खन्ना।
0: वाओ, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा लगा रीनी जी आज आपसे बातचीत करते हो, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए आकाशवाणी एफएम।
1: थैंक यू संतोष, थैंक यू वेरी मच।
0: तो दोस्तों, ये सारे थे आज के धुरंधर जिनसे हमने बातचीत की, और आकाशवाणी ने ऐसे ऐसे धुरंधर दिए हैं हम सब के लिए जो एक मील का पत्थर बने, कोहनूर है हिंदुस्तान के लिए। आज थे हमारे साथ देवकी नंदन पांडे जी की हमने बातचीत की, अमीन सयानी जी से की उनकी बातचीत हमने आपको सुनाई, और साथ ही साथ लाइव बातचीत की रिनी साइमन खन्ना से। तो इसी के साथ आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव लेता है विदा आपसे, लेकिन 4:05 पर फिर आपसे मुलाकात करेगा अल्फा जैन में, तो आप बने रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी एफएम रेनबो

0: मार्केट के बारे में क्या
1: परफॉर्मेंस का बोलो
2: मार्केट ट्रेंड
0: सुनने में आएगी
3: आज की खबर में पहले ही बोला था ब्रो
2: माय प्रेडिक्शन इज
4: आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन
2: मेरे दोस्त ने बोला
5: देवी जी की सुनो
6: अब अच्छा लग रहा है ना लगेगा ही हमने शोर को म्यूट जो कर दिया है आपको भी अपने कीमती सपनों को सच करना है तो बेमतलब की बातों को म्यूट कर दो और म्यूचुअल फंड्स में डटे रहो म्यूचुअल फंड्स सही है
7: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें
8: फूड इंटॉलरेंस और एलर्जीज लगा सिम्टम्स दू वोमिटिंग डायरिया पेट बिखा स्किन रैशेस चेहरा जीबा और लिप्स फुली जा सांस लोबले दुख पा खाना से इतु खान लगा कारण तो खा लुआ कुनबा गाँवते नमिला कारणे हम पारे खा लुआ पैकेट से कुनबा इनग्रीडियंट्स गाँवते नमिला लगा जानकारी खान लिखी किना थका तो भल पारा पुरी लोबी इतु लिखा खान तो इनिगा हम पारे मे कन्टेन्ट एलर्जन नहलेबी लैक्टोज फ्री ग्लूटेन फ्री खा लुआ गाँवते नमिला खान तो नाकिनी जोन खान लैक्टोज इनटॉलरेंट आसे ताई खान दूध और दूध पारा बना सामान खान नाखाबो लागे और ग्लूटेन इनटॉलरेंट थका खान तो आटा मैदा खान नाखाबो लागे खा लुआ पारा एलर्जिक रिएक्शंस बेसि होइले डॉक्टर लगते साय लबी इतु जानकारी दी आसे फूड सेफ्टी अथॉरिटी नागालैंड
9: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for short service commission information technology entry. Last date for submission is 1st June 2026. For more details visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy, combat ready, cohesive, Atmanirbhar, safeguarding seas for a viksit Samriddh Bharat.
10: FM Dragoban
11: 103 MHz
10: News, music and entertainment
11: This is FM Dragoban
10: FM 103 MHz
12: Good evening listeners, ito Akashwani Kohima FM Dragoban 103 MHz Prapaniyan program di thakye huni asi Awaitya huni hobo Hindu film gan program SMS program that is Apni Pasand Gana program So SMS likhi bole नंबर आसे 9436805333 मेसेज रुखी आते दे मैं पहला गीत बजाय दिया से किंतु पहला अपनी हम सब के आर जी जेकब वेलकम करिए से स्वागत करिए से नमस्ते और सलाम को इन्हें जनाय दिया से वेल पहला गीत होने वो अपन लोग के अपनी हालात से मैं रुखी देखा दें दे अमित मिश्रा नेहा बसिन और रोचक खोली लगा वस्ते से फिल्म से आयारी गीत लिखे हुए से मनोज मुंताशीर और म्यूजिक दिए हुए से रोचक खोली

वाले तो कुल की ने पत्थर से धनंजय फ्रॉम सरपत्थर असम पर टाइमिंग से घना अरिजीत सिंह लगा हुआ स्टे फिल्म से गद्दर टू अब टाइट गाना डेडिकेट कर दिया से अमल बसुमत्री बिमल बसुमत्री भाईकुन मुंडा केवी ले को मेदा रोक केवी ले को मेथा को इन लिखा से आशुतोष अविनाश रोकवी ले मेथा मंदिरा अखुजो दुर्गेश नगनपुरी सुनीता बसुमतरी अभिजीत अपूर्वा पाठोर हितेंद्र दास अंजलि फागु उरांग अर्जितेंजन एंड ऑल टू ऑल द लिसनर्स को इन्हें लिखी है एंड टू यू को इन्हें लिखी है वेल थैंक यू सो मच धनंजय अपनी लिखी ना पता दिया कारण तो इतना अपना लोग सुनब लिसनर्स अरिजीत सिंह और मिथुन लगा वास्ते फिल्म से गद्दार टू

Well, दूसरा गीत आपको होनी वाला है तो गीत करने लिखी ना पता से सलाम नमस्ते दे आर जे जैक्सन मोरम पर गर्व प्राइड एंड ऑनर मूवी ला गाना तुमको हम तुमको निगाहों में गाना तो प्ले करी दी भी आरो दुर्गेश नगनपुरी अमल बसुमत्री बिमल बसुमत्री अंजलि बसुमत्री सुनीता बसुमत्री रमेश पात्रो रुनु पात्रो लक्की बीरेन हंसे चुबा के जमेर एंड ऑल रेगुलर लिसनर्स कान के डेडिकेट करी दी भी लिखी आसे और तो लिखी गिना पता है रेगुलर लिसनर्स आसे ताई तला नाम आसे भाईकुन मुंडा डिस्ट्रिक्ट आसे चराई दियो सोनारी आसाम पर लिखी गिना पता है सो लिसनर्स कह दिए निचिना इतना उदित नारायण और श्रेया घोषाल का वास्ते शुनब फिल्म आसे गर्फ

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। भारत और नॉर्डिक देशों ने आपसी संबंधों को हरित प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के साथ नॉर्वे के ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अगले महीने होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने रेबीज से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में भीषण गर्मी की चेतावनी दी, दक्षिण क्षेत्र में तेज वर्षा की आशंका। और शुभमन गिल अफगानिस्तान के साथ टेस्ट और एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन के बाद श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: श्री मोदी ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में व्यापार में

0: नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्नत भागीदारी के जरिए प्रत्येक नॉर्डिक देश की विशेषज्ञताओं का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के बीच अनुसंधान, कौशल विकास और प्रतिभा के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं, स्टार्टअप तंत्र के स्तर पर सहयोग मजबूत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख रखते हैं।
0: वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर सहमत हैं कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक भी है और अर्जेंट भी है, और टेररिज्म पर भी हमारा क्लियर और यूनाइटेड स्टैंड है, नो कॉम्प्रोमाइज, नो डबल स्टैंडर्ड।
1: प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण के लिए इटली रवाना हो गए हैं। वे देर रात रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। इटली में भारत के राजदूत वाणी सरराजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा आदान प्रदान, नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सुश्री राव ने बताया कि यह यात्रा समुद्री सुरक्षा, मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं, व्यापार साझेदारियों और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ठोस परिणाम देने का लक्ष्य रखती है और इस दौरान कुछ महत्वपूर्ण समझौतों की घोषणा होने की उम्मीद है। इटली में भारतीय समुदाय के बारे में बात करते हुए भारत की राजदूत वाणी सरराजू राव ने कहा कि भारतीय प्रवासी समुदाय ने डेयरी और कृषि सहित कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय की गतिशीलता और कल्याण से जुड़े मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान चर्चा हो सकती है। सुपर्णा भाटिया, रोम से।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। रक्षा मंत्री दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आंग्यू बेक के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता रक्षा और सहयोग की समीक्षा करेंगे तथा द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के लिए नई पहलों की तलाश करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। श्री प्रधान ने कहा कि दोबारा परीक्षा सख्त सुरक्षा नियमों के अंतर्गत सुरक्षित, बिना किसी रुकावट के और पूरी तरह से पुख्ता तरीके से आयोजित की जानी चाहिए। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्थित रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस कोचिंग सेंटर में एक और तलाश अभियान चलाकर कथित नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि एक और दिन बढ़ा दी है। उम्मीदवार अब 23 मई तक आवेदन जमा करा सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग देश का सबसे विकसित जनजातीय संभाग बन जाएगा। बस्तर में श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है वर्ष 2031 तक बस्तर के लोगों के औसत आमदनी में 6 गुना वृद्धि करना है। उन्होंने कहा कि

0: बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर अगले 5 सालों के लिए इसके विकास से संबंधित एक वैज्ञानिक प्रारूप तैयार किया है।
1: 19 मई 2026 की ये तिथि है कि जहां से नक्सल प्रभावित क्षेत्र में संपूर्ण विकास की परिकल्पना को लॉन्च किया जा रहा है। बस्तर के साथ जिले को नक्सलवाद से मुक्त कराने के लिए भारत सरकार के द्वारा यहां पर करीब करीब 200 सुरक्षा कैंप बनाए।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने, भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और विकसित भारत की दिशा में देश की प्रगति के लिए उद्योग और सरकार के बीच सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में श्री गोयल ने ये बात कही।
2: हम दुनिया की भू राजनीतिक परिस्थितियों और उनसे जुड़े जोखिमों को तेज सुधारों के अवसर में बदलेंगे। खुद को अधिक मजबूत और लचीला बनाने की तैयारी करेंगे, अपनी सप्लाई चेन को और सशक्त करेंगे और दुनिया जो भी अवसर दे रही है तथा भारत जो अवसर दुनिया को प्रदान कर रहा है उसके पूरे लाभ उठाएंगे। उदाहरण के तौर पर वे 38 देश जो एक के बाद एक मुक्त व्यापार समझौते के ढांचे में शामिल हो रहे हैं।
0: वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत का लक्ष्य 2030-31 तक 350 अरब डॉलर का कपड़ा बाजार बनाना है। इसमें 100 अरब डॉलर का निर्यात शामिल होगा। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि टिकाऊ और प्राकृतिक फाइबर ही कपड़ा क्षेत्र के भविष्य को आगे बढ़ाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से उर्वरक प्राप्त करना दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है। ओडिशा के भुवनेश्वर में श्री चौहान ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद केंद्र सरकार किसानों के लिए पर्याप्त उर्वरक आपूर्ति सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा को देखते हुए रेबी से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दे दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजी का दुष्कर्म मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले में एक से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। इससे पहले इस मामले में सियालदह सत्र अदालत ने संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने आज फालता विधानसभा क्षेत्र में होने वाले आगामी पुनर्मतदान से अपना नाम वापस लेने की घोषणा की है। भाजपा के नेतृत्व वाली नई सरकार के विशेष पैकेज की उन्होंने सराहना की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष नई दिल्ली में भारत की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। रूस ने बताया है कि श्री पुतिन 12 और 13 सितंबर को सम्मेलन में शामिल होंगे। एक साल के अंदर श्री पुतिन की यह दूसरी भारत यात्रा होगी। इससे पहले वो दिसंबर 2025 में भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली आए थे। देश के पूर्वोत्तर राज्यों में कारीगरों और बुनकरों के एक समूह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से आज राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अपनी प्रतिभा दर्शाने के लिए मंच प्रदान करने पर राष्ट्रपति का आभार व्यक्त किया। राष्ट्रपति ने कारीगरों और बुनकरों को सहायता देने की जरूरत पर बल दिया ताकि उनका हुनर अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और वे आत्मनिर्भर बन सकें। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 114 अंक गिरकर 75,201 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 32 अंक लुढ़ककर 23,618 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 18 पैसे कमजोर होकर 96.53 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ।
1: मौसम विभाग ने

0: गुरुवार तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रातें अधिक गर्म रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। कल पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली एनसीआर में भीषण लू की आशंका है। अगले दो से तीन दिन के लिए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दक्षिण पश्चिम बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश यहां मराठवाड़ा और उड़ीसा में लू चलने की संभावना है। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि 21 मई तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल, माहे और लक्षद्वीप में तेज बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश, बिहार, गंगा के मैदानी, पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा में गरज के साथ तेज हवाओं का अनुमान है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच और तीन एक दिवसीय मैच की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। शुभमन गिल टेस्ट टीम के कप्तान और केएल राहुल को उपकप्तान बनाया गया है। शुभमन गिल एक दिवसीय टीम की कप्तानी करेंगे और श्रेयस अय्यर उपकप्तान होंगे। आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लखनऊ सुपर जायंट्स ने 16 ओवर में दो विकेट पर 182 रन बना लिए हैं। राजस्थान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और नॉर्डिक देशों ने आपसी संबंधों को हरित प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के साथ नॉर्वे के ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अगले महीने होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने रेबी से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में भीषण गर्मी की चेतावनी दी। दक्षिण क्षेत्र में तेज वर्षा की आशंका। और शुभमन गिल अफगानिस्तान के साथ टेस्ट और एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I am Subhadra Ramachandran with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says investments from Nordic countries in India rose by 200% in the past decade, attends third India-Nordic summit in Oslo with counterparts from Norway, Sweden, Iceland, Finland and Denmark. Education Minister Dharmendra Pradhan reviews preparation for NEET UG re-examination to be held next month. Supreme Court allows euthanasia for rabid and dangerous stray dogs to protect human life. Russian President Vladimir Putin to attend New Delhi BRICS summit in September this year. IMD warns of severe heatwave conditions in northern India, forecasts heavy rainfall in southern region. In cricket, Shubman Gill to lead Indian squads in Test and ODI series against Afghanistan. India and the Nordic nations comprising Norway, Sweden, Denmark, Finland and Iceland have elevated their bilateral ties to a green technology and innovation strategic partnership. Mr. Modi made the announcement while addressing a joint press meet with leaders of Nordic nations after attending the third India-Nordic summit in Norwegian capital Oslo today.
2: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: Prime Minister Narendra Modi said investments from Nordic countries in India rose by 200% in the past decade.
2: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी

वेल तो अको मैसेज आएगा से गुड इवनिंग आर जे जेकब एफ एम ट्रेकपान का सर्वर कभी कभी डाउन हो जाता है जी लिसनर्स को इन्होंने लिखा से राधेश्याम नगनपुरी एंड कुसुम बाई हाँ हो भी सकता है कभी कभी क्योंकि वेदर का ऊपर में भी होता है. एनीवे थैंक यू सो मच आप लोग ने भेज के लिख के भेज दिया इसीलिए. और ये तो लिखिया से गुड इवनिंग आर जे जेकब हाउ आर यू वेल आई एम वेरी फाइन थैंक यू. और लिसनर्स से तो हुदीगना बता दो श्यामा भाई एंड फैमिली खंडवा मध्य प्रदेश से. वेल श्यामा भाई एंड फैमिली थैंक यू सो मच आप लोग का मैसेज पढ़ के बहुत खुशी हुआ है. दुर्गेश नगनपुरी भी लिखी ना बता से आपका पसंदीदा गाना लगातार एफ एम ट्रकपन 103 में घर पर कोई ना लिखी है से. वेल थैंक यू सो मच दुर्गेश जी एंड शुक्रिया. इधर लिखी ना बताया से आर जे जेकब सर बेस्ट प्रोग्राम के लिए कोई ना लिखी है से दिल तक. ओके दुर्गेश नगनपुरी बाबू दिव्यांश और वंदना नगनपुरी तक में लिखी ना पता चाहिए. थैंक यू सो मच फॉर राइटिंग. हेलो गुड इवनिंग ब्रो टू नाइट प्लीज प्ले समटाइम सम लव सॉन्ग लव जस्ट एंड एनफ बाय डॉन एंड यू वेल आई से दिस इज नॉट द वेस्टर्न म्यूजिक टाइम इट्स ऑलरेडी ओवर वेस्टर्न म्यूजिक टू. सो एनी वे थैंक यू सो मच लिखी ना बताई दिया करने. तो को होनी वो अपना लोग के शंकर महादेवन यशिता शर्मा मनीष कुमार और खरस लगा वास्ते से फिल्म से दिल धड़कने दो.